पलके बिछा के स्वागत में खड़े हैं हम। आइए, आपके आने से रोशन है हर पल। खुशियों का कारवा साथ लाई हूँ, स्वाद के जायके की बहार लाई हूँ। आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। केम छो भाई लोग, सब मजा मा? भाई सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि आप सब आचार्य 90 FM के खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना ये हमारा फर्ज है। वैसे आप सबने आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, अगर नहीं तो अभी तुरंत हमारे दोस्ती वाले आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दोस्ती को कन्फर्म कीजिए। अब चलिए, अब हम बनाने जा रहे हैं कुछ इंस्टेंट रेसिपीज जिन्हें झटपट तरीके से बनाकर फटाफट खाया जाता है। मुझ जैसे नौ सीखिए कुक के लिए ये एकदम आसान टाइप की रेसिपी है। तो तैयार हो जाइए हमारी फर्स्ट रेसिपी, जो एक फेमस इंडियन स्टार्टर है और इसका नाम है मसाला पापड़। छोटी भूख या फिर एज ए स्टार्टर आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। मसाला पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मूंग या उड़द दाल पापड़ 2, तेल 2 चम्मच, टमाटर के टुकड़े 4 चम्मच, प्याज के टुकड़े 4 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया मीन्स कोतमीर 2 चम्मच, नींबू 1, नमक 2 चुटकी, चाट मसाला 1 चम्मच और ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं उस खाने में उतरने वाली है। अब हम मसाला पापड़ बनाने की आसान सी रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप तवे पर थोड़ा तेल फैलाकर पापड़ को सेक लीजिए। ऐसा करने से ये पापड़ ना ही एकदम ड्राई और ना ही एकदम ऑयली होंगे। हर पापड़ को एक सेपरेट प्लेट में रखिए। फिर एक कटोरी में टमाटर और प्याज के टुकड़ों को डालिए। उसमें नमक और चाट मसाला मिक्स कीजिए। अब इस मिश्रण को भुने हुए पापड़ पर अच्छे से फैलाइए। फिर उस पर नींबू निचोड़िए। फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर मीन्स कोतमीर से गार्निश कीजिए। इस तरह से आपका मसाला पापड़ हो गया है तैयार और बच्चा पार्टी इस मसाला पापड़ को खाने के लिए हो रही है बेकरार। तो भाई देर किस बात की, मौका भी है और दस्तूर भी है, अब तो मसाला पापड़ बनाना ही है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस मसाला पापड़ को आप दाल चावल, सब्जी रोटी या फिर एज अ इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं। पैकेट वाले चिप्स वगैरह खाने से अच्छा है कि हम होममेड मसाला पापड़ खाएं, क्योंकि होममेड खाने में टेस्ट और हेल्थ दोनों ही होता है। वैसे भी इन गर्मियों के दिनों में ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसका इलाज है मसाला पापड़। इस पापड़ की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है प्यारे प्यारे पापड़। सबको प्यारे लगते हैं खर्रम खुर्रम पापड़, उसका एक निवाला लेने वाला दोबारा मांगेगा आकर। इसे बनाने लगते हैं चटपटे मसाले और दाल, पापड़ से ही सजता है हर हिंदुस्तानी थाल। चाहे तलो या भूनो क्रिस्पी इसकी आवाज, खाने का जायका बढ़ाता इसका अनोखा सा स्वाद। पापड़ हमारी परंपरा का है महत्वपूर्ण व्यंजन, हर रोज खाओ एक फिर भी बढ़ेगा नहीं वजन। हमारा पारंपरिक खाना नहीं है जंक फूड, स्वाद है इतना अच्छा कि सुधर देगा बिगड़ा मूड। दोबारा से अपनाएं हम हमारी भारतीय संस्कृति, देसी खाना खाकर हम पाए अच्छी प्रकृति। हमारे पारंपरिक व्यंजन नहीं किसी से कम, सारे विश्व में भारत का डंका, यही है हमारा प्रण। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा।

वैसे पापड़ की तारीफ तो हमने सुन ली, अब हम चावल की एक सिंपल सी रेसिपी सुनते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पहले भोगी का त्योहार होता है। भोगी के दिन मेरे पड़ोस की एक आंटी जो कर्नाटक के बेलगांव से हैं, वो इसे बनाती थी। आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम इसे समर सीजन स्पेशल कूलिंग रेसिपी के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस रेसिपी का नाम है दही कांदा चावल। इसे बनाना आसान तो है ही, लेकिन इसे एंजॉय करना एकदम इंटरेस्टिंग है। दही कांदा चावल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: जीरा डालकर पकाए हुए चावल 2 कटोरी। यहाँ पर आप कोई भी चावल ले सकते हैं, जैसे बासमती, कोलम या उकड़ा चावल। बस उन्हें अच्छे से पकाकर रूम टेम्परेचर पर लाइए। फिर हमें चाहिए ताजा दही 1 कटोरी, कोथमीर बारीक काटकर 2 चम्मच, नमक स्वादानुसार। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ। स्प्रिंग ऑनियन मीन्स हरी प्याज बारीक काटकर 1 कटोरी। दैट्स इट। अब हम इसे बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में पके हुए चावल, दही, हरी प्याज, नमक, इन सबको अपने हाथों से मिक्स कीजिए। हाथों से मिक्स करने से ये अच्छे से मिक्स होता है। फिर एक सुंदर सी प्लेट में इस चावल को परोसिए और बारीक कटी हुई कोथमीर से इसे गार्निश कीजिए। है ना झटपट तैयार होने वाली आसान सी रेसिपी। दही चावल और प्याज को एक साथ खाने से पेट में ठंडक सी छा जाती है और ये पचने में भी आसान है। इसे खाने से एसिडिटी कंट्रोल होती है और पेट भरने की फीलिंग भी मिलती है। हर रोज सुबह दही चावल का नाश्ता आप खाकर ट्राई तो कीजिए, फिर दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे आप। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। ताजा दही को यूज करना बेटर ऑप्शन है। खट्टा दही खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह के समय दही खाना चाहिए, दोपहर के वक्त छाछ पीनी चाहिए और शाम को दूध पीना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। अब खाना बनाकर मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे मेरे पड़ोस की आंटी भोगी की थाली में दही चावल प्याज के साथ गाजर का कचुम्बर भी देती थी। गाजर के कचुम्बर का टेस्ट भी सुपर्ब है और खाने की थाली जितनी ज्यादा कलरफुल दिखती हो उतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो पेश है हमारी अगली कलरफुल रेसिपी जिसका नाम है गाजराची कोशिंबीर मींस गाजर का कचुम्बर। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कद्दूकस किए हुए गाजर मींस ग्रेटेड कैरेट्स 2 कटोरी, भुने हुए सिंगदाने का दरदरा पाउडर 4 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1, नींबू का रस 1 चम्मच, कोथमीर गार्निश के लिए। अब हम गाजर का कचुम्बर बनाने की रेसिपी सुनते हैं। एक बर्तन में कद्दूकस किए हुए गाजर, सिंगदाना पाउडर, नमक, शक्कर और थोड़ा नींबू का रस सब एक साथ मिलाकर अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर एक कांच की कटोरी में इस इंस्टेंट कचुम्बर को सर्व कीजिए। डेकोरेशन के लिए उस पर थोड़ी कोथमीर डालिए। दैट्स इट। गाजराची कोशिंबीर मींस गाजर का कचुम्बर तैयार है खाने के लिए। आप चाहे तो थोड़े से घी में जीरा और कड़ी पत्ता का तड़का लगाकर इस पर डाल सकते हैं। इस तरह गाजर के टेस्टी कचुम्बर को बनाइए और बेझिझक इसका लुत्फ़ उठाइए। वैसे गाजर का हलवा तो हम सब खाते ही हैं, लेकिन गाजर का कचुम्बर भी कुछ कम नहीं है। अपनी भारतीय संस्कृति में ऐसे कई सारे व्यंजन हैं जो हम भूल से गए हैं और आचार्य 90 FM के स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारी भारतीय संस्कृति को फिर से जानने की कोशिश जरूर करेंगे। देखा जाए तो ऐसी क्विक रेसिपीज से पेट भरता ही है, साथ ही कुकिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है। ज्यादा खाना बनाकर उसे फ्रिज में रखना, मतलब बासी बनाकर खाना, ये हमारी खाद्य संस्कृति बिल्कुल नहीं है। अगर ज्यादा खाना बने तो उसे अपनों के साथ शेयर कीजिए और मिल बांट कर खाइए। इससे आपसी दोस्ती और अपनापन बढ़ेगा। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे फेमस लेडी शेफ तरला दलाल जी की। खाना पकाने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ईयर 2007 में तरला जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेजिटेरियन रेसिपीज से रिलेटेड 170 से ज्यादा कुक बुक तरला जी ने लिखी और वेजिटेरियन डेलिकेसीज को कई सारे घरों तक पहुंचाया। तरला जी ने शाकाहारी व्यंजनों को एक नया नजरिया देकर ट्रेडिशनल खान पान को मॉडर्न टच दिया है। ईयर 2023 में उन पर तरला इस नाम की एक बायोपिक फिल्म भी आई थी। हमें नाज है भारतीय शाकाहारी पाक कला की जूलिया चाइल्ड मींस शेफ तरला दलाल जी पर, जिन्होंने कुकिंग को एज अ मीडियम यूज करके सारी दुनिया में शाकाहार को फेमस किया। आज हम बात करेंगे गुजरात के एक फेमस पतले और क्रिस्पी ट्रेडिशनल नाश्ते के बारे में। ये नाश्ता मेनली गेहूं का आटा, तेल और मसालों से बनता है। ये लाइट वेट होने की वजह से एक हेल्दी स्नैक माना जाता है। इसे मेनली ट्रैवलिंग के दौरान खाना प्रेफर किया जाता है। वैसे हमारे गुजराती और राजस्थानी व्यंजनों में ये काफी फेमस है। लो कैलोरी और हाई फाइबर होने के कारण इसे वेट कंट्रोल करने वाला खाना इस रूप में पहचाना जाता। मैं बात कर रही हूँ ऑल टाइम फेवरेट खाकरा इस व्यंजन के बारे में। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। हमारे नन्हे ऑडियंस फिलहाल समर वेकेशन मोड पर है, राइट? तो क्यों ना हम इनके लिए ही खाकरा से बनने वाली कोई चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाएं? इटालियन पिज्जा तो सबको मालूम ही है कि नहीं? तो आज हम खाकरा यूज करके इंडियन स्टाइल खाकरा पिज्जा बनाते हैं। खाकरा को एज अ बेस यूज करके उस पर पिज्जा सॉस, सब्जियां और चीज लगाकर हम पिज्जा को भारतीय रूप में ढालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए बच्चा पार्टी स्पेशल खाकरा पिज्जा बनाने के लिए। खाकरा पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: प्लेन या मसाला खाकरा 4, टोमेटो सॉस 4 बड़े चम्मच, ग्रेटेड चीज आइदर मोजरेला और प्रोसेस्ड, प्याज, शिमला मिर्च, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स सब मिलाकर 1 कप। यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को बारीक काट कर यूज कीजिए।
फिर हमें चाहिए चाट मसाला, ओरिगानो सीड्स, चिली फ्लेक्स, सब स्वादानुसार। यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच ओरिगानो सीड्स और एक चम्मच चिली फ्लेक्स ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए मक्खन या घी एक चम्मच। अब हम खाकरा पिज्जा बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले हमें पिज्जा बेस को तैयार करना है, इसलिए खाकरे के ऊपर टोमेटो सॉस की एक पतली लेयर लगाइए। अब स्वीट कॉर्न के दाने, कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च को उस खाकरे पर इक्वली फैलाइए। अब इस पर बहुत सारा ग्रेटेड चीज डालिए। आखिर में चाट मसाला, ओरेगानो सीड्स और चिली फ्लेक्स को इस पिज्जा पर छिड़के। फिर एक नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा सा मक्खन या घी लगाइए। अब तैयार पिज्जा को ध्यान से उठाकर एकदम आराम से उस पैन में रख दीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगाकर एकदम लो फ्लेम पे उसे पकाइए। लगभग 2-3 मिनट के बाद पिज्जा के ऊपर का चीज मेल्ट होने लगेगा। फिर उसे एक सर्विंग प्लेट में संभाल कर निकालिए। इस तरह से होममेड और इंडियन स्टाइल खाकरा पिज्जा हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने बच्चा पार्टी है एकदम बेकरार। तो भाई, शुभ काम में देरी क्यों, झटपट खाकरा पिज्जा बनाइए और फटाफट से इसका लुत्फ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। वैसे अगर आप चाहें तो इस पिज्जा पर बारीक कटा हुआ पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये और न्यूट्रिशियस बनेगा। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कुकिंग करना हम सबको सीखना ही चाहिए। बच्चों को सॉलिड और लिक्विड पदार्थों में क्या फर्क है ये एक्सप्लेन करने के लिए किचन एक अच्छा मीडियम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, छोटे बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए चम्मच चलाना, छीलना, मिक्स करना, ऐसी एक्टिविटीज एकदम यूजफुल है। किचन से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से छोटे बच्चे दूसरों के काम की सराहना करना सीखते हैं, क्योंकि खाना बनाने में लगने वाली मेहनत को बच्चे खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज सीखने के लिए अन्न का सम्मान करना भी सीखेंगे। भाई, लेक्चर मेथड से बेहतर तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही होता है कि नहीं? इनफैक्ट कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज से हमारे नन्हे ऑडियंस बिल्कुल बोर नहीं होंगे, बल्कि खाना बनाना और औरों के साथ उसे शेयर करना, इस काम के लिए वो एक्साइटेड ही रहेंगे। आज मैं आपको महाभारत के 5 पांडवों में से एक पांडव की कहानी सुनाती हूँ। अज्ञातवास के समय महाबली भीम वल्लभ इस नाम को धारण कर विराट नाम के एक राजा के किचन में एज अ कुक काम करने लगे। एक बार क्या हुआ कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजा विराट के महल में पधारे। तब किचन में ज्यादा कुछ सब्जियां नहीं बची थी। तब गदाधारी भीम यानी वल्लभ ने जितनी भी थोड़ी बहुत सब्जियां थी उन सबको मिलाकर एक नया व्यंजन बनाया, जिसका नाम था अवियल। और इस अवियल को खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य काफी खुश हुए। साउथ इंडिया, मेनली केरल राज्य में अवियल इस व्यंजन को इम्पोर्टेंट माना जाता है। गदाधारी भीम, जिनमें हजार हाथियों की शक्ति थी, वो खुद एक कुकिंग एक्सपर्ट थे। और खास बात ये है कि खाना बनाना और खूब खाना, इन दोनों कलाओं में भीम एक्सपर्ट थे। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? खाने और खिलाने की इंटरेस्टिंग बातें तो चलती ही रहेंगी। अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइए। वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।

Hi everyone, this is Mohit Lalwani. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाना अच्छा लगा. सब्सक्राइब टू द चैनल, नीचे एक बेल आइकन बना हुआ है छोटा सा, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी अगली वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहेंगी. ऐसे प्यार करते रहिए. लॉट्स ऑफ लव. राधे राधे.

कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यह जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। आप सुन रहे हैं स्वाद का जायका और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आप ली केमो ना चेन भाई, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ही हैं, क्योंकि आप आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो के खास दोस्त हैं और हमारी इस दोस्ती को निभाने हम वापस आ गए हैं। आज हम बच्चा पार्टी स्पेशल रेसिपी बनाने वाले हैं और इस यमी रेसिपी का नाम है इंस्टेंट दही वड़ा। दही वड़ा ये भारत का एक बहुत पुराना और पारंपरिक व्यंजन है। दही वड़ा की खोज अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ष पहले हुई थी। हमारे पंजाब में इसे दही भल्ला के नाम से जानते हैं। ओडिशा और बंगाल में दही वड़ा को दही बोरा इस नाम से जाना जाता है और साउथ इंडियन दोस्त इसे थाईरू वड़ी कहकर पुकारते हैं। एंटायर साउथ एशिया में दही वड़ा एक फेमस चाट आइटम है और गर्मी के सीजन में दही वड़ा खाने से थोड़ी ठंडक तो मिलती ही है। ट्रेडिशनल दही वड़ा रेसिपी को अपने अनोखे स्वाद और पौष्टिकता के लिए जाना जाता है। वैसे होली के त्योहार पर दही वड़ा बनाना कॉमन बात है, लेकिन हमारे नन्हे ऑडियंस के लिए हम इसे गर्मी के सीजन में इंस्टेंट तरीके से बना रहे हैं। हमारी आज की इंस्टेंट दही वड़ा रेसिपी ऑलमोस्ट 90% नॉन फायर टाइप की है। मैं तो कहती हूँ कि घर के बच्चे इसे जरूर बनाएं। तो चलिए अब हम इंस्टेंट दही वड़ा बनाने की रेसिपी सुनते हैं। इंस्टेंट दही वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कड़क जीरा बटर 10 या 12, गरम पानी 4 बड़ी कटोरी, शक्कर 5 चम्मच, हरी चटनी मींस पुदीना चटनी 5-6 चम्मच, इमली की चटनी 5-6 चम्मच, चाट मसाला 1/2 या 1 चम्मच, दही 4 कटोरी, कोतमीर गार्निश के लिए, खारी बूंदी 4 चम्मच, ये ऑप्शनल है, और ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस दही वड़ा में जरूर उतरेंगी। चलिए अब हम इंस्टेंट दही वड़ा बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले गर्म पानी में सारे जीरा बटर को 10 मिनट के लिए डुबाकर रख दीजिए। लगभग 10-15 मिनट के बाद उन जीरा बटर को पानी से बाहर निकालिए। फिर हर एक जीरा बटर को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसे निचोड़ लीजिए। इससे क्या होगा कि बटर के अंदर का एक्स्ट्रा पानी तो निकलेगा ही और वो सॉफ्ट बनेंगे। अब एक बड़ी सी कटोरी में जीरा बटर को फैलाकर रखिए। फिर हर जीरा बटर पर इमली की चटनी और पुदीने की चटनी को लगाइए। फिर दही में शक्कर मिक्स कीजिए। इस मीठे दही को सारे जीरा बटर पर अच्छे से फैलाइए। फिर उस पर थोड़ा चाट मसाला छिड़क दीजिए। फाइनली बारीक कटी कोतमीर और खारी बूंदी से इंस्टेंट दही वड़ा को गार्निश कीजिए। अगर आप चाहें तो खारी बूंदी के बदले थोड़े से अनार के दाने यूज कर सकते हैं। अब इस यमी और इंस्टेंट दही वड़ा की खूबसूरत छवि को अपने मोबाइल कैमरा से कैप्चर कीजिए। फिर अपनों के साथ मिलकर दही वड़ा एंजॉय कीजिए। कुछ लोगों को ठंडा दही वड़ा खाना पसंद है, तो उसे थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रखिए और फिर खाइए। वैसे मुझ में उतना पेशेंस तो है नहीं, इसलिए मैं तो ताजा बनाया हुआ दही वड़ा खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। वैसे वो कौन सा खाना है जिसे ठंडा करके खाने की बजाय आप ताजा ताजा खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस दही वड़ा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है छोटा सा दही बड़ा। जब मैं देखूं दही वड़ा, चंचल मन मेरा जाता लड़खड़ा। दही और वड़ा का हुआ सलोखा, तब निखर आता है स्वाद अनोखा। साथ देने चटनी पुदीना और इमली, और प्यारा लगे दही वड़ा मखमली। एक दिन के लिए डाइट होगा साइड, और दही वड़ा को करूंगी अपने पेट में हाइड। थोड़े टाइम के लिए मैं जाऊं सब कुछ भूल, दही वड़ा का टेस्ट होता ही है ब्यूटीफुल। जब सामने होता है ऐसा टेस्टी खाना, तब बजना ही चाहिए आचार्य 90 FM पर गाना।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आजय भारतीय सीमा। वैसे दही बड़ा खाकर और खिलाकर आपको अद्भुत प्रकार का आनंद तो मिलेगा ही, क्योंकि ये होता ही है इतना टेम्प्टिंग कि कोई इसे मना ही नहीं कर सकता। इमली का खट्टापन और पुदीने का रिफ्रेशिंग टेस्ट, ये तो मुंह में घुलते ही आप गर्मी को भूल ही जाओगे। और जब छोटे बच्चे अपने हाथों से इसे बनाकर सर्व करेंगे तो सबको खाना ही पड़ेगा। वैसे ओरिजिनल दही बड़ा रेसिपी में उड़द दाल को भिगोकर, उसे पीसकर, उसमें कुछ मसाले वगैरह डालकर गर्मा गर्म तेल में फ्राई किया जाता है, लेकिन हमारे नन्हे ऑडियंस के लिए हमने इसे आसान तरीके से बनाया है। बड़ों के हाथ का खाना तो हम सब हर रोज खाते ही हैं। कभी कभी बच्चों को भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का चांस मिलना चाहिए। कुकिंग जैसी बेसिक लाइफ स्किल्स को बच्चे जरूर सीखें और रेगुलरली इम्प्लीमेंट भी करें। कुकिंग सीखना कभी भी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता। कुकिंग से आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वालिटी डेवलप होती है, साथ ही भोजन के प्रति आपके मन में आदर भावना जागती है। खाना बनाना मेहनत का काम होता है, इस बात को बच्चे इस प्रैक्टिकल मेथड से सीख पाएंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे और भी बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारती सिंह। हम बात कर रहे थे बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाने की और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम एक और रेसिपी की जानकारी सुनते हैं। हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की ऐसी रेसिपी जिसका ओरिजिन महाराष्ट्र और गुजरात से ताल्लुक रखता है। इसे दही से बनाया जाता है और त्योहारों में खास तौर पर इसे खाया और खिलाया जाता है। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और इसे खाने से गर्मियों में शरीर में कुछ थोड़ी सी ठंडक भी मिल जाती है और छोटे बच्चे अगर इसे अपने हाथों से बनाए तो इसकी मिठास दुगनी होगी और इसे एक मिठास टच मिलेगा। तो पेश है हमारी अगली रेसिपी जिसका नाम है फ्रूट श्रीखंड। फ्रूट श्रीखंड बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, हंग कर्ड मींस चक्का 1/2 किलो, पीसी हुई शक्कर 250 ग्राम मींस 1/2 किलो शक्कर ले लीजिए, केसर 7 या 8 धागे, सीजनल फ्रूट्स जैसे केला 1/2 बारीक कटकर, एप्पल 1/2 बारीक कटकर, अनार 2 चम्मच, बारीक कटा हुआ मैंगो 1/2, ग्रेप्स 5-6 इन्हें भी बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। फिर हमें चाहिए मिल्क मसाला या चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स 2 चम्मच। फिर लीजिए इलायची पाउडर 2 चुटकी, जायफल पाउडर 2 चुटकी, दैट्स इट। अब हम फ्रूट श्रीखंड बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले 2 कप गर्म पानी लीजिए, उसमें 50 ग्राम शक्कर को मिक्स कीजिए। अब सारे फ्रूट्स को इस चाशनी में डुबाकर 1/2 घंटे के लिए साइड में रख दीजिए। ऐसा करने से उन फ्रूट्स में से खट्टापन निकल जाएगा और सारे फ्रूट्स में शक्कर की मिठास घुल जाएगी। अब चक्का मींस हंग कर्ड में बाकी 200 ग्राम शक्कर को अच्छे से मिक्स कीजिए। इसे मिक्स करने में टाइम लगता है क्योंकि हंग कर्ड थोड़ा गाढ़ा सा होता है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 मिनट के लिए हंग कर्ड और शुगर को चम्मच से हिलाते रहिए। फिर इसमें शुगर सिरप वाले चॉप्ड फ्रूट्स के पीसेस डालिए। हमें चाशनी नहीं लेनी है, सिर्फ फ्रूट्स के टुकड़े ही लेने हैं। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इलायची पाउडर और जायफल पाउडर को भी इस फ्रूट श्रीखंड में मिक्स कीजिए। फाइनली केसर और ड्राई फ्रूट्स से फ्रूट श्रीखंड को डेकोरेट कीजिए। यहाँ पर मैं आपको हमेशा वाली एक टिप देना चाहती हूँ। इस श्रीखंड को कांच के बर्तन में ही रखिए क्योंकि खट्टी चीजों को मेटल के बर्तन में रखने से मेटल की क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। अब इस तैयार फ्रूट श्रीखंड का भोग भगवान को लगाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि खाने की सात्विकता बढ़ जाएगी। फिर अपनों के साथ आराम से बैठकर इस फ्रूट श्रीखंड का लुत्फ उठाइए। वैसे आपने लास्ट टाइम श्रीखंड के साथ पूरी कब खाई थी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं कि 12th century में श्रीखंड को शिखरिणी नाम से जाना जाता था। शिखरिणी मीन्स गाढ़ा या लटका हुआ दही, इन शॉर्ट हंग कर्ड। अब हम श्रीखंड के इन्वेंशन मीन्स श्रीखंड की खोज की स्टोरी सुनते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार श्रीखंड का इन्वेंशन घुमंतु चरवाहों ने किया था। घुमंतु चरवाहे मींस ऐसे लोग जो गाय बकरी वगैरह साथ लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। रात भर के सफर के दौरान दही को

करंट और मैंगो मींस आम्रखंड, ये फ्रूट बेस्ड फ्लेवर्स भी हैं। श्रीखंड के इनोवेटिव फ्लेवर्स में चॉकलेट, पान, राजभोग और अमेरिकन नट्स शामिल है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे महाराष्ट्र के नासिक शहर की एक दुकान में 40 जायकों का श्रीखंड मिलता है। कैन यू इमेजिन 40 टाइप्स ऑफ श्रीखंड। द श्रीखंड स्टूडियो नाम से फेमस इस दुकान में 280 to 600 रुपीज पर केजी के भाव से अलग अलग फ्लेवर्स वाले श्रीखंड मिलते हैं और इन श्रीखंड फ्लेवर्स के नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं कौन बनेगा श्रीखंड पति। अब हम नासिक शहर में मिलने वाले श्रीखंड के फ्लेवर्स के कुछ नाम सुनते हैं। केसर राजभोग श्रीखंड, अमेरिकन नट श्रीखंड, चोको आलमंड श्रीखंड, ब्राउनी श्रीखंड, पंचरत्न नट श्रीखंड, बटरस्कॉच श्रीखंड, रजवाड़ी श्रीखंड, नवरत्न नट श्रीखंड, अफगान ड्राई फ्रूट श्रीखंड, मावा बादाम श्रीखंड, केसर किंग श्रीखंड। अब ये सुनिए, ट्रैफिक जैम श्रीखंड, ये भी कभी होता है? भाई होता है। काजू अंगूर श्रीखंड, शाही अंजीर श्रीखंड, पाइनएप्पल श्रीखंड, शाही गुलकंद श्रीखंड, पेरीफेरी श्रीखंड, स्ट्रॉबेरी श्रीखंड, ब्लूबेरी श्रीखंड, सीताफल श्रीखंड, मिक्स फ्रूट श्रीखंड, क्लासिक इलायची श्रीखंड, मैंगो श्रीखंड, मर चॉकलेट श्रीखंड, काजू श्रीखंड, क्रीम श्रीखंड, चॉकलेट एंड कुकी श्रीखंड, बैंगनी श्रीखंड, पेरू मींस अमरूद श्रीखंड, संतरा श्रीखंड, अब ये सुनिए, नींबू श्रीखंड, चॉकलेट एंड नट श्रीखंड, कॉफी क्रम्बल श्रीखंड, ड्राई फ्रूट्स वेनिला श्रीखंड, जेरी श्रीखंड और फाइनली मिर्च श्रीखंड, मतलब मिर्ची के फ्लेवर का श्रीखंड। हाश, मैं तो थक गई भाई साहब, इतने सारे फ्लेवर्स को ट्राई करने मुझे 15-20 दिन तो जरूर लगेंगे। आई नीड अ ब्रेक। आप कहीं भी मत जाइए, हम और आप और भी बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारी अगली रेसिपी भी बच्चा पार्टी स्पेशल रेसिपी है, फ्रूट सैंडविच। ये वाली रेसिपी भी नॉन फायर रेसिपी है, जिसे हमारे नन्हे ऑडियंस एकदम आसानी से बना सकते हैं। भाई बच्चों को भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का चांस मिलना चाहिए, तभी तो वो फ्यूचर में किचन से रिलेटेड एक्टिविटीज में अपना पार्टिसिपेशन देंगे। वैसे फ्रूट्स खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा ही होता है, और फ्रूट्स का फॉर्म चेंज करके उसे इंटरेस्टिंग स्टाइल से पेश करें तो उसे खाने में ज्यादा मजा आता है। वैसे फ्रूट सैलेड, मिक्स फ्रूट जूस, ये तो कॉमन है। एक्चुअली सैंडविच है तो वेस्टर्न स्टाइल का खाना, लेकिन आचार्य 90 FM के नन्हे ऑडियंस के लिए हम इसे इंडियन स्टाइल से बना रहे हैं, और छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर हम इसे ज्यादा से ज्यादा हेल्दी तरीके से बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए अब हम फ्रूट सैंडविच बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। फ्रूट सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, व्हाइट, ब्राउन या मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइस 4, मिक्स फ्रूट जैसे स्ट्रॉबेरी, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, कीवी, इनके बारीक टुकड़े अप्रोक्सीमेटली 6 चम्मच, चपका मींस हंकर्ड 10 चम्मच, बटर 2 चम्मच, ब्लैक पेपर 2 पिंच, ब्लैक पेपर का पाउडर लेना है हमें 2 पिंच, नमक स्वादानुसार। यहाँ पर मैं 2 चुटकी नमक ले रही हूँ, और ढेर सारा प्यार भी चाहिए, वैसे बच्चे तो इसे प्यार से ही बनाएंगे। अब हम फ्रूट सैंडविच बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले चक्का में नमक और ब्लैक पेपर पाउडर मींस काली मिर्ची पाउडर को मिक्स कीजिए, फिर उसमें मिक्स फ्रूट्स ऐड कीजिए, उसे भी अच्छे से मिक्स कीजिए। अब सारे ब्रेड स्लाइस पर एक बड़ी सी कटोरी रखकर उसे राउंड शेप में कन्वर्ट कीजिए। अब ये राउंड शेप वाले ब्रेड स्लाइस पर थोड़ा सा बटर लगाइए। बटर को आप ब्रेड पर अच्छे से स्प्रेड कीजिए। क्या आप जानते हैं ब्रेड पर बटर क्यों लगाते हैं? बटर लगाने से सैंडविच के अंदर भरी हुई स्टफिंग का मॉइस्चर ब्रेड के ऊपरी लेयर तक जल्दी नहीं पहुंचता। है ना इंटरेस्टिंग बात? अब उस बटर वाले ब्रेड पर आप चक्का और फ्रूट वाली स्टफिंग को स्प्रेड कीजिए। उस स्टफिंग को आप जरा ज्यादा ही यूज कीजिए। फिर उसके ऊपर दूसरा ब्रेड स्लाइस रखकर उसे क्लोज कीजिए। अपने हाथों से उस ऊपर वाले ब्रेड स्लाइस को थोड़ा सा प्रेस कीजिए। जब अंदर की स्टफिंग उस सैंडविच से बाहर झांकेगी, तब वो सैंडविच ज्यादा टेम्पटिंग लगेगा। आप चाहे तो उस बाहर झलकने वाली स्टफिंग पर थोड़े से मिक्स सीड्स, रोस्टेड मिक्स सीड्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं। ऐसा करने से सैंडविच एक स्टाइलिश लुक में दिखेगा। आप चाहे तो राउंड शेप वाले इस सैंडविच को बीच में से काट कर भी डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से बच्चा पार्टी स्पेशल हेल्दी फ्रूट सैंडविच हो गया है तैयार, और बच्चों के हाथों से बनी इस टेम्पटिंग ट्रीट को एंजॉय करने मम्मी डैडी है बेकरार। तो देर किस बात की, आज ही फ्रूट सैंडविच बनाइए, और ऐसी ही कुछ खास रेसिपीज को सुनने के लिए आचार्य 90 FM को अब भी सब्सक्राइब कीजिए।

0: आप सुन रहे हैं स्वाद का जायका और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे बच्चों को कुकिंग में शामिल करने के लिए शुरू में ऐसे जुगाड़ करने ही पड़ते हैं, और बच्चे अगर अपने फ्रेंड्स को साथ लेकर कुकिंग सीखे तो वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। इससे शेयरिंग और केयरिंग वाली फीलिंग आती है। स्टार्टिंग में थोड़ी गड़बड़ होना मामूली सी बात है, इसीलिए घर के बड़ों का असिस्टेंस जरूरी है। फिर एक बार बच्चों में खाना बनाने का कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट आया तो कुकिंग उनका स्ट्रेस बस्टर बन सकता है। कभी कभी बच्चों को ही सुबह के नाश्ते की रेसिपी डिसाइड करने दीजिए। वैसे कुकिंग करते समय मेजरमेंट टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ता है, मीन्स मैथ्स और साइंस को भी कुकिंग से कोरिलेट कर सकते हैं, जिससे बच्चों के लिए हम एक टाइप का एजुकेशन ही दे रहे हैं। जरूरत है तो सब्र की। मटर छीलना, लहसुन छीलना, कोतमीर या मेथी की सब्जी को छांटना, मीन्स भाजा निवड़ने, ऐसे काम बच्चे आसानी से कर सकते हैं। लंच के समय छाछ बनाना या कचुम्बर बनाना, ऐसे आसान कामों में बच्चों को जरूर शामिल कीजिए। और चम्मच से खाना खाने की बजाय अपने साफ और धुले हुए हाथों से खाना खाने की हमारी भारतीय परंपरा को बच्चे और बड़े दोनों ही अपनाएं। हाथों से खाना खाने से हम उस खाने का टेक्सचर और टेम्परेचर महसूस कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा पूरा ध्यान थाली में रखे खाने पर रहता है, न कि मोबाइल पर। और ऐसे तरीके से खाना खाने के बाद अन्नदाता सुखी भव, ऐसे शब्द अपने आप हमारे मुंह से निकलेंगे। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। आपका साथ धूप में छांव है, आपका साथ समंदर में नाव है, आपका साथ अंधियारे में उजाला है। कुछ पलों के लिए हो रही हूँ दूर, जल्दी ही मिलूंगी आपसे लेकर स्वाद के जायके का नूर। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

पलके बिछा के स्वागत में खड़े हैं हम। आइए, आपके आने से रोशन है हर पल। खुशियों का कारवा साथ लाई हूँ, स्वाद के जायके की बहार लाई हूँ। आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। केम छो भाई लोग, सब मजा मा? भाई सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि आप सब आचार्य 90 FM के खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना ये हमारा फर्ज है। वैसे आप सबने आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, अगर नहीं तो अभी तुरंत हमारे दोस्ती वाले आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दोस्ती को कन्फर्म कीजिए। अब चलिए, अब हम बनाने जा रहे हैं कुछ इंस्टेंट रेसिपीज जिन्हें झटपट तरीके से बनाकर फटाफट खाया जाता है। मुझ जैसे नौ सीखिए कुक के लिए ये एकदम आसान टाइप की रेसिपी है। तो तैयार हो जाइए हमारी फर्स्ट रेसिपी, जो एक फेमस इंडियन स्टार्टर है और इसका नाम है मसाला पापड़। छोटी भूख या फिर एज ए स्टार्टर आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। मसाला पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मूंग या उड़द दाल पापड़ 2, तेल 2 चम्मच, टमाटर के टुकड़े 4 चम्मच, प्याज के टुकड़े 4 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया मीन्स कोतमीर 2 चम्मच, नींबू 1, नमक 2 चुटकी, चाट मसाला 1 चम्मच और ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं उस खाने में उतरने वाली है। अब हम मसाला पापड़ बनाने की आसान सी रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप तवे पर थोड़ा तेल फैलाकर पापड़ को सेक लीजिए। ऐसा करने से ये पापड़ ना ही एकदम ड्राई और ना ही एकदम ऑयली होंगे। हर पापड़ को एक सेपरेट प्लेट में रखिए। फिर एक कटोरी में टमाटर और प्याज के टुकड़ों को डालिए, उसमें नमक और चाट मसाला मिक्स कीजिए। अब इस मिश्रण को भुने हुए पापड़ पर अच्छे से फैलाइए, फिर उस पर नींबू निचोड़िए। फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर मींस कोतमीर से गार्निश कीजिए। इस तरह से आपका मसाला पापड़ हो गया है तैयार और बच्चा पार्टी इस मसाला पापड़ को खाने के लिए हो रही है बेकरार। तो भाई देर किस बात की, मौका भी है और दस्तूर भी है, अब तो मसाला पापड़ बनाना ही है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस मसाला पापड़ को आप दाल चावल, सब्जी रोटी या फिर एज अ इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं। पैकेट वाले चिप्स वगैरह खाने से अच्छा है कि हम होममेड मसाला पापड़ खाएं, क्योंकि होममेड खाने में टेस्ट और हेल्थ दोनों ही होता है। वैसे भी इन गर्मियों के दिनों में ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसका इलाज है मसाला पापड़। इस पापड़ की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है प्यारे प्यारे पापड़। सबको प्यारे लगते हैं खर्रम खुर्रम पापड़, उसका एक निवाला लेने वाला दोबारा मांगेगा आकर। इसे बनाने लगते हैं चटपटे मसाले और दाल, पापड़ से ही सजता है हर हिंदुस्तानी थाल। चाहे तलो या भूनो क्रिस्पी इसकी आवाज, खाने का जायका बढ़ाता इसका अनोखा सा स्वाद। पापड़ हमारी परंपरा का है महत्वपूर्ण व्यंजन, हर रोज खाओ एक फिर भी बढ़ेगा नहीं वजन। हमारा पारंपरिक खाना नहीं है जंक फूड, स्वाद है इतना अच्छा कि सुधर देगा बिगड़ा मूड। दोबारा से अपनाए हम हमारी भारतीय संस्कृति, देसी खाना खाकर हम पाए अच्छी प्रकृति। हमारे पारंपरिक व्यंजन नहीं किसी से कम, सारे

वैसे पापड़ की तारीफ तो हमने सुन ली, अब हम चावल की एक सिंपल सी रेसिपी सुनते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पहले भोगी का त्योहार होता है। भोगी के दिन मेरे पड़ोस की एक आंटी जो कर्नाटक के बेलगांव से हैं, वो इसे बनाती थी। आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम इसे समर सीजन स्पेशल कूलिंग रेसिपी के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस रेसिपी का नाम है दही कांदा चावल। इसे बनाना आसान तो है ही, लेकिन इसे एंजॉय करना एकदम इंटरेस्टिंग है। दही कांदा चावल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: जीरा डालकर पकाए हुए चावल 2 कटोरी। यहाँ पर आप कोई भी चावल ले सकते हैं, जैसे बासमती, कोलम या उकड़ा चावल। बस उन्हें अच्छे से पकाकर रूम टेम्परेचर पर लाइए। फिर हमें चाहिए ताजा दही 1 कटोरी, कोथमीर बारीक काटकर 2 चम्मच, नमक स्वादानुसार। यहाँ पर मैं आधा चम्मच नमक ले रही हूँ। स्प्रिंग ऑनियन मीन्स हरी प्याज बारीक काटकर 1 कटोरी। दैट्स इट। अब हम इसे बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में पके हुए चावल, दही, हरी प्याज, नमक, इन सबको अपने हाथों से मिक्स कीजिए। हाथों से मिक्स करने से ये अच्छे से मिक्स होता है। फिर एक सुंदर सी प्लेट में इस चावल को परोसिए और बारीक कटी हुई कोथमीर से गार्निश कीजिए। है ना झटपट तैयार होने वाली आसान सी रेसिपी। दही चावल और प्याज को एक साथ खाने से पेट में ठंडक सी छा जाती है और ये पचने में भी आसान है। इसे खाने से एसिडिटी कंट्रोल होती है और पेट भरने की फीलिंग भी मिलती है। हर रोज सुबह दही चावल का नाश्ता आप खाकर ट्राई तो कीजिए, फिर दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे आप। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। ताजा दही को यूज करना बेटर ऑप्शन है। खट्टा दही खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह के समय दही खाना चाहिए, दोपहर के वक्त छाछ पीनी चाहिए और शाम को दूध पीना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। अब खाना बनाकर मैं तो थक गई भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे मेरे पड़ोस की आंटी भोगी की थाली में दही चावल प्याज के साथ गाजर का कचुम्बर भी देती थी। गाजर के कचुम्बर का टेस्ट भी सुपर्ब है और खाने की थाली जितनी ज्यादा कलरफुल दिखती हो उतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो पेश है हमारी अगली कलरफुल रेसिपी जिसका नाम है गाजराची कोशिंबीर, मींस गाजर का कचुम्बर। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कद्दूकस किए हुए गाजर मींस ग्रेटेड कैरेट्स 2 कटोरी, भुने हुए सिंगदाने का दरदरा पाउडर 4 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1, नींबू का रस 1 चम्मच, कोथमीर गार्निश के लिए। अब हम गाजर का कचुम्बर बनाने की रेसिपी सुनते हैं। एक बर्तन में कद्दूकस किए हुए गाजर, सिंगदाना पाउडर, नमक, शक्कर और थोड़ा नींबू का रस सब एक साथ मिलाकर अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर एक कांच की कटोरी में इस इंस्टेंट कचुम्बर को सर्व कीजिए। डेकोरेशन के लिए उस पर थोड़ी कोथमीर डालिए। दैट्स इट। गाजराची कोशिंबीर मींस गाजर का कचुम्बर तैयार है खाने के लिए। आप चाहे तो थोड़े से घी में जीरा और कड़ी पत्ता का तड़का लगाकर इस पर डाल सकते हैं। इस तरह गाजर के टेस्टी कचुम्बर को बनाइए और बेझिझक इसका लुत्फ़ उठाइए। वैसे गाजर का हलवा तो हम सब खाते ही हैं, लेकिन गाजर का कचुम्बर भी कुछ कम नहीं है। अपनी भारतीय संस्कृति में ऐसे कई सारे व्यंजन हैं जो हम भूल से गए हैं और आचार्य 90 FM के स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारी भारतीय संस्कृति को फिर से जानने की कोशिश जरूर करेंगे। देखा जाए तो ऐसी क्विक रेसिपीज से पेट भरता ही है, साथ ही कुकिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है। ज्यादा खाना बनाकर उसे फ्रिज में रखना, मतलब बासी बनाकर खाना, ये हमारी खाद्य संस्कृति बिल्कुल नहीं है। अगर ज्यादा खाना बने तो उसे अपनों के साथ शेयर कीजिए और मिल बांट कर खाइए। इससे आपसी दोस्ती और अपनापन बढ़ेगा। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे फेमस लेडी शेफ तरला दलाल जी की। खाना पकाने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ईयर 2007 में तरला जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेजिटेरियन रेसिपी से रिलेटेड 170 से ज्यादा कुक बुक तरला जी ने लिखी और वेजिटेरियन डेलिकेसीज को कई सारे घरों तक पहुंचाया। तरला जी ने शाकाहारी व्यंजनों को एक नया नजरिया देकर ट्रेडिशनल खान पान को मॉडर्न टच दिया है। ईयर 2023 में उन पर तरला इस नाम की एक बायोपिक फिल्म भी आई थी। हमें नाज है भारतीय शाकाहारी पाक कला की जूलिया चाइल्ड मींस शेफ तरला दलाल जी पर, जिन्होंने कुकिंग को एज अ मीडियम यूज करके सारी दुनिया में शाकाहार को फेमस किया। आज हम बात करेंगे गुजरात के एक फेमस पतले और क्रिस्पी ट्रेडिशनल नाश्ते के बारे में। ये नाश्ता मेनली गेहूं का आटा, तेल और मसालों से बनता है। ये लाइट वेट होने की वजह से एक हेल्दी स्नैक माना जाता है। इसे मेनली ट्रैवलिंग के दौरान खाना प्रेफर किया जाता है। वैसे हमारे गुजराती और राजस्थानी व्यंजनों में ये काफी फेमस है। लो कैलोरी और हाई फाइबर होने के कारण इसे वेट कंट्रोल करने वाला खाना इस रूप में पहचाना जाता। मैं बात कर रही हूँ ऑल टाइम फेवरेट खाकरा इस व्यंजन के बारे में। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। हमारे नन्हे ऑडियंस फिलहाल समर वेकेशन मोड पर है, राइट? तो क्यों ना हम इनके लिए ही खाकरा से बनने वाली कोई चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाए। इटालियन पिज्जा तो सबको मालूम ही है कि नहीं? तो आज हम खाकरा यूज करके इंडियन स्टाइल खाकरा पिज्जा बनाते हैं। खाकरा को एज अ बेस यूज करके उस पर पिज्जा सॉस, सब्जियां और चीज लगाकर हम पिज्जा को भारतीय रूप में ढालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए बच्चा पार्टी स्पेशल खाकरा पिज्जा बनाने के लिए। खाकरा पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: प्लेन या मसाला खाकरा 4, टोमेटो सॉस 4 बड़े चम्मच, ग्रेटेड चीज आइदर मोजरेला और प्रोसेस्ड, प्याज, शिमला मिर्च, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स सब मिलाकर 1 कप। यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को बारीक काट कर यूज कीजिए।
फिर हमें चाहिए चाट मसाला, ओरिगानो सीड्स, चिली फ्लेक्स, सब स्वादानुसार। यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच ओरिगानो सीड्स और एक चम्मच चिली फ्लेक्स ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए मक्खन या घी, एक चम्मच। अब हम खाकरा पिज्जा बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले हमें पिज्जा बेस को तैयार करना है, इसलिए खाकरे के ऊपर टोमेटो सॉस की एक पतली लेयर लगाइए। अब स्वीट कॉर्न के दाने, कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च को उस खाकरे पर इक्वली फैलाइए। अब इस पर बहुत सारा ग्रेटेड चीज डालिए। आखिर में चाट मसाला, ओरेगानो सीड्स और चिली फ्लेक्स को इस पिज्जा पर छिड़के। फिर एक नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा सा मक्खन या घी लगाइए। अब तैयार पिज्जा को ध्यान से उठाकर एकदम आराम से उस पैन में रख दीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगाकर एकदम लो फ्लेम पे उसे पकाइए। लगभग 2-3 मिनट के बाद पिज्जा के ऊपर का चीज मेल्ट होने लगेगा। फिर उसे एक सर्विंग प्लेट में संभाल कर निकालिए। इस तरह से होममेड और इंडियन स्टाइल खाकरा पिज्जा हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने बच्चा पार्टी है एकदम बेकरार। तो भाई, शुभ काम में देरी क्यों, झटपट खाकरा पिज्जा बनाइए और फटाफट से इसका लुत्फ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे अगर आप चाहें तो इस पिज्जा पर बारीक कटा हुआ पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये और न्यूट्रिशियस बनेगा। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कुकिंग करना हम सबको सीखना ही चाहिए। बच्चों को सॉलिड और लिक्विड पदार्थों में क्या फर्क है ये एक्सप्लेन करने के लिए किचन एक अच्छा मीडियम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, छोटे बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए चम्मच चलाना, छीलना, मिक्स करना, ऐसी एक्टिविटीज एकदम यूजफुल है। किचन से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से छोटे बच्चे दूसरों के काम की सराहना करना सीखते हैं, क्योंकि खाना बनाने में लगने वाली मेहनत को बच्चे खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज सीखने के लिए अन्न का सम्मान करना भी सीखेंगे। भाई, लेक्चर मेथड से बेहतर तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही होता है कि नहीं? इनफैक्ट कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज से हमारे नन्हे ऑडियंस बिल्कुल बोर नहीं होंगे, बल्कि खाना बनाना और औरों के साथ उसे शेयर करना, इस काम के लिए वो एक्साइटेड ही रहेंगे। आज मैं आपको महाभारत के 5 पांडवों में से एक पांडव की कहानी सुनाती हूँ। अज्ञातवास के समय महाबली भीम वल्लभ इस नाम को धारण कर विराट नाम के एक राजा के किचन में एज अ कुक काम करने लगे। एक बार क्या हुआ कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजा विराट के महल में पधारे। तब किचन में ज्यादा कुछ सब्जियां नहीं बची थी। तब गदाधारी भीम यानी वल्लभ ने जितनी भी थोड़ी बहुत सब्जियां थी उन सब को मिलाकर एक नया व्यंजन बनाया, जिसका नाम था अवियल। और इस अवियल को खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य काफी खुश हुए। साउथ इंडिया, मेनली केरल राज्य में अवियल इस व्यंजन को इम्पोर्टेंट माना जाता है। गदाधारी भीम जिनमें हजार हाथियों की शक्ति थी, वो खुद एक कुकिंग एक्सपर्ट थे। और खास बात ये है कि खाना बनाना और खूब खाना, इन दोनों कलाओं में भीम एक्सपर्ट थे। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? खाने और खिलाने की इंटरेस्टिंग बातें तो चलती ही रहेंगी। अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइए। We will be back after a short break.

वेलकम बैक टू स्वाद का जायका। आप सुन रहे हैं आचार्य NITFM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने गदाधारी भीम की स्टोरी सुनी। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि खाना खाने वाले को खाना बनाना आए तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल डेवलप होती है। किचन में काम करना एक रूटीन वर्क होता है जो हमें डिसिप्लिन मतलब अनुशासन सिखाता है। कुकिंग करते समय मसालों और टेस्ट को बैलेंस करना पड़ता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस रखना पड़ता है। ताजी सब्जियां हमें मेहनत से मिले रिजल्ट को दिखाती है, उसे देखकर हम भी प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जनाब इसीलिए तो किचन में एंट्री मारिए और कुकिंग की अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए। जो भी चीजें अवेलेबल है उन्हें इस्तेमाल करके जिसने खाना बनाना सीख लिया, समझो उसने जिंदगी की कठिनाइयों को फेस करके जिंदगी जीना सीख लिया है कि नहीं। आप सुन रहे हैं आचार्य NITFM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई घर का किचन मींस घर का दिल होता है। यहाँ पर बर्तनों की खनक और मसालों की महक हमें प्यार और पोषण से भरती है। इस रसोई घर की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मेरा रसोई घर एक जादुई कोना। घर के अंदर एक और घर, नाम है उसका रसोई घर। पूरे घर में जादुई नगरी बसती है सिर्फ यहीं पर। कढ़ाई है बीमार तो कुकर आगे आया, बजाकर सीटियां सारा टेंशन भगाया। पेट की आग बुझाता काला सा एक तवा, राई जीरे के छौंक से खुशबू बिखेरती हवा। किचन से ही पाती शक्ति, नाम है जिसका देह। घी की खुशबू से पाते हैं हम सब स्नेह। प्याज टमाटर अदरक लहसुन इन चीजों का जब लगे तड़का, तब हींग की मनमोहक खुशबू से चंचल मन मेरा बहका। घर का ये कोना जीवन की हकीकत बतलाता, मेरा रसोई घर मुझे जिंदगी जीना सिखलाता। आप सुन रहे हैं आचार्य NITFM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। भाई टेस्टी खाना और आचार्य NITFM पर बजने वाला गाना ये तो सुपर हिट कॉम्बिनेशन है। आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले। स्वाद का जायका इस सफर पर हमें तजुर्बे तमाम मिले। मिलकर बिछड़ना और बिछड़कर फिर मिलना यही है जिंदगी का दस्तूर। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, इसमें मेरा क्या कसूर। आज के लिए बस इतना ही। हम वापस मिलेंगे हर सोमवार दोपहर 1 बजे और हर शुक्रवार शाम 4 बजे आरजे भारतीय सीमा की तरफ से। आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

0: नमस्ते दर्शकों, आज हम सेलिब्रिटी शो में हमने आमंत्रित किया है नीलम गोयल जी को। नीलम जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपका स्टूडियो में भी स्वागत है और हमारे आचार्य 90 FM पे स्वागत है और सेलिब्रिटी शो में भी आपका स्वागत है। नीलम जी गोयल एक स्नातक, आगरा यूनिवर्सिटी की स्नातक रही है और कुकिंग क्लासेस, लिखना पढ़ना, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन स्लम एरिया इनका कार्य रहा है। काउंसलिंग फॉर कैंसर पेशेंट्स, लोगों से मिलना और मुक्त छंद की कविताएं लिखती है, कृष्ण के भजन गाती है और आखर मुक्ता साहित्यिक पत्रिका में स्वरचित कविताओं का उनका गीत का छपना हुआ है। कहे अनकहे शब्दों का कैनवास इस कहानी संग्रह में, स्वयं रचित कहानी मुट्ठी भर सपने का भी छपना हुआ है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित 21 सर्वश्रेष्ठ कहानियां पत्रिका को उन्होंने जीता है और पतंजलि योग पीठ से प्रमाणित योग शिक्षिका भी रह चुकी है। बहुत सारे ये सब आप वही पूछना चाहूंगी, इतना सारा आप व्यस्त रहती है, पूरा 24 घंटे भी आपको कम पढ़ते रहेंगे, तो ये सब आप मैनेज कैसे करती है वो शुरू में ही करना?
1: बस मेरे को ना कुछ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है
0: जी।
1: और इन सब चीजों से मैं बचपन से थोड़ी प्रेरित रही हूँ, क्रिएटिव मैं शुरू से ही थी
0: जी।
1: और ये जो पढ़ने का शौक मुझे लगा वो मेरी मदर से लगा।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो उस समय भी ना ये कौन कौन सी पुस्तिकाएं होती थी, धर्मयोग,
0: हाँ,
1: और ये कादम्बिनी, इस तरह की मतलब हाई लेवल की बुक्स पढ़ती थी। वो 12th पास थी उस समय की,
0: हाँ,
1: लेकिन कोई जॉब नहीं किया था,
0: हाँ,
1: तो बस मुझे वो उनको पढ़ते देखती थी और धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे को रीडिंग करने की जो मिल जाता था, धर्मयोग, कोई भी पत्रिका, अखबार, मतलब जो भी मिल गया, हाँ, वो मुझे उसको पढ़ना है।
0: वाह, वेरी नाइस। आपके साहित्य के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन आप कविताएं, जैसे हमारी पहली मुलाकात में आप मुझे जान गई थी, आप बहुत कथा सुंदर से प्रस्तुत करते हैं, कविताएं भी लिखती हैं, तो जाहिर सी बात है अभी आपने माँ का जिक्र किया तो हमारी सबकी शुरुआत तो माँ से ही होती है, तो माँ के ऊपर आपने जो कविता लिखी है वो हमें सुनाइए प्लीज।
1: सबका धन्यवाद, नमस्ते। माँ केवल एक शब्द ही नहीं है, माँ बल्कि असीम शक्ति, ममता और आस्था का स्वरूप है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो माँ का नाम ही एक दीपक बनकर हमारे जीवन में उजाला करता है और रास्ता दिखाता है। आज उसी जगत जननी शक्ति स्वरूपा माँ के चरणों में, श्री चरणों में अपनी भावनाओं का ये छोटा सा भजन अर्पित करने जा रही हूँ, श्रद्धा भक्ति के साथ आप सब जुड़िए
0: जी।
1: पधारो माँ पूजा को,

0: बहुत सुंदर बनाया है, क्या बात है,
1: पहन लो प्यार का गजरा, बहुत सुंदर बनाया है, पधारो माँ पूजा को, पधारो माँ पूजा को, मंदिर सजाया है, सजाई आरती हमने अमित अनुराग।

0: जाया है।
1: क्या बात है, वेरी नाइस। जय माता दी। मेरा मन तो गंगा मैया के यहाँ पहुँच गया वाराणसी में, क्योंकि कितनी सुंदर, मतलब हम वो गंगा मैया को माँ कहते पुकार के बुलाते हैं, और जो गंगा आरती का जो विलोभनीय दृश्य हमें अभी आपकी ये कविता में ये पद में साकार हुआ, वेरी नाइस, वेरी मतलब वेरी टचिंग। अभी शुरू करते हैं कि आपका जो साहित्य प्रवास है, आपने जैसे बोला कि माँ बहुत बुक्स घर में रहते थे, तो आप पढ़ते गए मतलब जो शैक्षणिक जो भी हमारा स्कूल का पढ़ना रहता है वो अलग, और आपको हिंदी में ज्यादा रुचि है, तो आपने बीए इन हिंदी भी वैसे किया है, तो हिंदी के प्रति लगाव या फिर आस्था, आपको कौन से लेखक पसंद है हिंदी के, उसके बारे में और क्यों पसंद है?
2: मेरे को मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बहुत पसंद है
1: जी,
2: और रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियां बहुत पसंद, क्योंकि ये ना हमारे आसपास जो दिखता है उन सबसे जुड़ी हुई है, सामाजिक समस्याएं, स्त्री की समस्याएं, और समाज में जितनी भी व्यभिचार या जितना उत्पीड़न होता है, तो उन सबके ऊपर जो कहानियां लिखी है तो मुझे वो बहुत टचिंग कर लगती है, बहुत भावपूर्ण होती है, और मेरे को ना कहीं गहरे तक ऐसे ही ना क्या हुआ, कभी मैंने कहीं किसी से कुछ सुना, मेरी बड़ी दीदी है तो वो भी साहित्यिक में बहुत
1: अच्छा
2: पहुंची हुई है, बहुत ज्यादा। हाँ
1: अच्छा,
2: तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मेरे को उसमें, मैं लिखने लगी, लिखते लिखते क्या हुआ, जुहू में रहते थे हम लोग, तो वहाँ कृष्ण मंदिर था वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो मैं सडनली मैंने सोच लिया था कि मैं वहाँ जाके पहले दर्शन करके फिर ही नाश्ता किया करूंगी। वहाँ जाके जब मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होकर शांति के साथ जब बैठती थी ना, तो बस भगवान का चेहरा देखती थी, तो उस चेहरे को देखकर मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं जब उनको देखती थी ना तो मेरे को रोना आता था।
1: अच्छा,
2: और रोते रोते धीरे धीरे धीरे धीरे वो भाव उत्पन्न होने लगा।
1: हाँ,
2: और पता लगा मैं तो वहाँ बैठे बैठे मोबाइल में ही उस समय जो आता था उस समय लिखती थी।
1: अच्छा,
2: फिर घर आकर जब उनको सुनाती थी तो सबको बहुत अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था ये कैसे लिखा गया, मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी और ने लिखा है। फिर वो लिखने लगी, फिर धीरे धीरे मैं फिर उस स्पिरिचुअल ग्रुप से जुड़ी।
1: अच्छा,
2: फेसबुक पर अब उसमें जो था मैं अपनी ये रचनाएं डालने लगी, तो मोस्टली मैं तब कृष्णा के लिए ही लिखती थी।
1: अच्छा,
2: लिखते लिखते फिर धीरे धीरे कुछ और भी भाव होने लगा, जैसे मैं कभी गार्डन में गई तो दो तीन लेडीज जैसे बैठी हुई थी वहाँ, तो वो बहुत परेशान, उन्होंने अपनी कुछ स्टोरी बताई।
1: हाँ,
2: तो मतलब मैं भी सेंट्री हो जाती थी कुछ, मैं भी ना ऐसी हूँ कि जल्दी मेरे भाव को छू जाती है किसी भी बात में, तो उन्होंने जब वो सुनाती थी तो मैं मुझे लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर अपने शब्दों में स्टोरी लिखती थी, और वो जो स्टोरी सबको सुनाती थी ना तो सबको अच्छी लगती थी।
1: हाँ,
2: बस मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैं साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी, उसमें अपना आंगना करके मेरा साहित्यिक ग्रुप है।
1: अच्छा,
2: उसमें हम लोग सीखने सिखाने का रखते हैं, जैसे कि ये दोहा है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उसमें, फिर जैसे दोहा है, छंद है, मुक्तक है, कविता तो मैं छंद मुक्ति लिखती हूँ।
1: अच्छा,
2: बस इस तरह से मेरा धीरे धीरे लिखने का शौक बढ़ता चला गया
1: जी। आपसे ऐसी बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM, और आज हमारे सेलिब्रिटी शो में हमारे साथ जुड़ी है नीलम गोयल जी, जो हिंदी की साहित्यिक है, हिंदी की स्नातक है, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM ओनली।

0: ब्रेक के बाद आप सभी से जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शो में। हमारे साथ आज की सेलिब्रिटी है नीलम गोयल मैडम, और जो हमें बहुत कुछ आज कथाएं सुनवाने वाली है, कविताएं सुनवाने वाली है। मैडम आप मतलब हम सब लेडीज हैं, तो हमारी हमें डेली परेशानियां होती है, घर का भी देखना पड़ता है, और जो नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो भी वहां पे मतलब बच्चों का देखना, घर का देखना और ऑफिस का भी काम देखना, दोनों स्तर पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेटियों को वो स्थान नहीं मिलता जो आज के समाज में मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है। और उसके ऊपर जो आप मैंने आपकी सुनी है वो कविता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ हमारे आचार्य 90 FM के दर्शकों को भी वो सुनवाए। तो जरूर आपने वो आप बेटी के दर्द दुख को समझती है और उसके बारे में आपने लिखा है, तो वो जरूर हमें सुनवाइए।
1: जी बिल्कुल, ये सच बात है कि हमारे समाज में आज भी बेटियां बहुत कुछ आगे कर रही हैं, लेकिन ना फिर भी कहीं ना कहीं उनको उनका दमन होता है, कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है और वो अपनी इच्छाओं से हर कुछ नहीं कर पाती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी केवल एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है और एक ऐसा प्यारा रिश्ता है जो जन्म से पहले ही दिलों से जुड़ जाता है। आज मैं उसी अनमोल रिश्ते बेटी पर अपनी भावनाएं प्रस्तुत करती हूँ।
0: जी
1: बेटी, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना, जिसका जिसके हंसी से घर आंगन में बसंत उतर आता है।
0: क्या बात,
1: उसकी हंसी में ही संसार की रौनक बसती है और जिसकी आंखों में भविष्य के अनगिनत सपनों की किरणें झिलमिलाती हैं। वो केवल किसी घर की लाड़ली ही नहीं है केवल, बल्कि हर समाज की वो आत्मा है, हर संस्कृति की पहचान है। बेटी के रूप में ही संवेदना जन्म लेती है और ममता अपना अर्थ पाती है और भविष्य अपनी दिशा।
0: वाह क्या बात,
1: आज बेटी दिवस पर हमें ये स्मरण करना है कि बेटी का सम्मान केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला वो संस्कार है। हर बेटी को पढ़ने का, लिखने का, अपनी इच्छा से उड़ने का, स्वयं को पहचानने का अधिकार है
0: जी।
1: क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो एक पूरा युग प्रकाशमान होता है।
0: जी बिल्कुल,
1: आज की बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, विज्ञान में, साहित्य में, खेल में, राजनीति में, पाक कला में, मतलब कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहाँ वो पहुंची नहीं है। हर जगह उसने अपनी पहचान बनाई है, उसकी उड़ान आसमानों को छू रही है, परंतु विडंबना ये है कि कुछ स्थानों पर आज भी बेटी के साथ भेदभाव, अत्याचार और शोषण का सामना उसको करना ही पड़ता है। ये सब हमें झकझोरता है, मन को परेशान कर देता है और सोचने के लिए विवश करता है और हमें सजग भी करता है कि कोई भी बेटी अब भय और अन्याय की छाया में ना रहे। बेटी का सम्मान, सुरक्षा, उसकी देखभाल, स्वावलंबन और हमारा नैतिक, सामाजिक, मानवीय दायित्व तो है कि बेटी आस्था भी है, प्रेरणा भी है, उससे ही धरती की मुस्कान जीवित है। इसलिए बेटी केवल उत्सव नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है। बेटी पर कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है जो आपसे साझा करती हूँ। नन्ही सी हंसी में उजियारा बसे
0: जी,
1: हर सपने में उसका सितारा बसे, न रोको उड़ाने, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, न रोको उड़ाने ये फलक छूले, हर बेटी में ही तो सारा जहां बसे।
0: वाह,
1: बेटी मुस्कान है, बेटी अरमान है, जीवन की हर राह में वरदान है। आओ प्रण करें आज हम सभी, हर बालिका का सम्मान हमारा मान है।
0: वाह यस वेरी नाइस। अभी ये कविता तो हम सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कथाएं भी लिखती हैं, तो आपकी कथा कहाँ और कथा और कविता कहाँ कहाँ प्रस्तुत करती हैं?
1: कथाएं और कविता, ये हमारा एक साहित्यिक ग्रुप है, उस पर भेजती हूँ, कुछ किताबों में भी छपती हूँ। और मैं बहुत पहले जब मैं शादी होकर ही आई थी तो वहाँ हम लोग होली का
0: त्योहार मनाते थे
1: जी। होली के बाद हमारे यहाँ 8 दिन तक ये लेडीज को बुलाना और खिलाना पिलाना उत्सव मनाते थे, जिसको जो रुचि होती थी वो आपस में शेयर करता था।

0: तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अपोजिट था। तो वहाँ क्या होता था, मतलब बहुत सिंपल, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे वो भी, लेकिन जो रहन सहन और जो ख्याल थे वो थोड़े अलग थे
1: जी।
0: मतलब इतना डिफरेंस था कि मेरे को वो लोग बिलायती बहू कहने लगे।
1: अच्छा।
0: पर एक समय ऐसा आया कि जब उन्होंने मेरे विचारों को सुनते थे, मेरी सेवा को देखते थे, तो धीरे धीरे मेरी ये उन्होंने लिखी हुई चीजें भी पढ़ते थे, तो उनको उन्होंने फिर मतलब इतना मान सम्मान दिया कि जो मेरे बड़े लोग थे ना वो भी मेरे को ऐसे इनवाइट करते थे, मैं आपको वो किस्सों में बता नहीं सकती कि वो सबके बीच में मेरे को किस तरह से खड़ा करके फिर मेरा बताते थे लोगों को।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो इस तरह से मेरा उत्साह वर्धन बहुत हुआ। फिर मैंने साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी तो उसमें लिखना शुरू किया। तो एक बार मैंने अपनी फ्रेंड के ऊपर संस्मरण लिखा, जब संस्मरण लिखा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बोले ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं पढ़ रही हूँ तो जैसे मैं सामने रेखा चित्र कर दिया हो ऐसा लग रहा है। तो उससे मैं बहुत प्रेरित हुई, उत्साहवर्धन हुआ। फिर उन्होंने एक बोले कि आपको कहानियां लिखनी है। मैंने कहा मैंने ऐसी कहानियां नहीं लिखी है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप कोशिश कीजिए, आप लिखोगी, आप लिख सकते हो। फिर मैंने दो कहानियां लिखी जिसमें से एक मेरी पास हुई और उन्होंने इस कहे अनकहे शब्दों के कैनवास में छपी। इससे पहले क्या था ना, छोटी छोटी बुक्स में छोटी छोटी उसमें निकल रही थी। एक जैसे ये है आखर लिखता, इसमें ये वर्ष में तीन निकलती थी।
1: अच्छा।
0: तो उसमें एक बार ये कविता निकली, एक बार वो मेरी कहानी निकली।
1: अच्छा।
0: बस उससे मैं प्रेरित हुई और फिर मैंने लिखना शुरू किया
1: जी। अभी आप सामाजिक कार्य से भी जुड़े हैं, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप कैंसर पेशेंट से ज्यादा मतलब उनसे ज्यादा मिलते हैं, तो वो सामाजिक कार्य की रुचि आपने कैसे?
0: वो क्या था मेरे अंदर ना, ये शुरू से सेवा का भाव था।
1: अच्छा।
0: जब मैंने ग्रेजुएशन करके चुकी तो एक महीने की छुट्टी थी
1: जी,
0: और शायद मेरी को देखने वाले भी कुछ लोग आने वाले थे घर पर। तो उस बीच मैंने घर में कहा कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे को जो है
1: पढ़ना
0: लॉ करना है।
1: अच्छा।
0: मुझे आगे लॉ करना है। तो सब लोग बोले कि हाँ हाँ हो गया लॉ, सब हो गया।
1: अच्छा।
0: बस अब क्या और क्या करना है? मैंने कहा मेरे को अच्छा स्कूल में टीचिंग करनी है।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा ठीक है, अब मैंने कहा विदाउट पे करनी है। तो पास में एक स्कूल था छोटा सा और उसमें मैं जाने लगी। वन मंथ मैंने पढ़ाया। अब उसमें जो था एक बच्चा भी था, वो धीरे धीरे मुझसे बहुत अटैच हो गया और बोला दीदी मैं आपसे और भी पढ़ना चाहूँ। मैंने कहा ठीक है तुम घर आ जाए करो।
1: अच्छा।
0: वो घर आने लगा, मैंने उसको पढ़ाया। उसका नंबर्स बहुत अच्छे आए। कुछ नहीं, वो हो गया, मेरी शादी भी हो गई। 25 साल बाद मेरे पास कॉल आती है उसकी।
1: अच्छा।
0: कि हेलो दीदी बोल रही है। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने कौन राजू? अरे दीदी आप भूल गई, मैं वही राजू हूँ जिसको आपने घर में बैठ के पढ़ाती थी यार।
1: अच्छा।
0: आज मैं इस पोस्ट पर हूँ, आया है, नौकरी कर रहा हूँ, बेंगलोर में हूँ।
1: क्या बात है,
0: मतलब मैं वो पड़ी थी उस समय खुशी की वजह से। तो ये मेरे को ना शुरू से था। और इसके बाद फिर मेरी जब शादी हो गई तो एक पास में एक दूध जिनके यहाँ से आता था, जैन मंदिर के बराबर में उनकी दूध का गाय वगैरह रखते थे, तो वो जब लेते थे उनसे, तो उसके एक भाई की ना डेथ हो गई थी, उसके बच्चे थे, तो वो परेशान थे और मुझे लगता था शायद अभी इनके घर वाले इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने उनको बोला मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मेरे दो बच्चे हो चुके थे तब तक, कि वो चले जाते हैं तुम इस बीच आ जाए करो, मैं काम निपटा के 11 बजे करी तुमको टाइम दूंगी।
1: अच्छा।
0: उसको इतना अच्छा पढ़ना आ गया कि उसने 12th पास किया।
1: क्या बात है।
0: और मतलब वो अपनी लाइफ में शादीवादी हो गई, सेट हो गई। तो मुझे ये शुरू से कुछ आदत थी। अब यहाँ जब इन्होंने VRS लिया बैंक से, स्टेट बैंक में मेरे हस्बैंड
1: काम करते थे,
0: तो जब उन्होंने VRS लिया तो सब लोग बोले कि अरे इतने वो ले रहे हैं और आप परेशान हो जाओगी, घर में रह के क्या करोगी, ये सारे दिन चाय बनवाएंगे और कॉफी बनवाएंगे, सारे दिन तुम बिजी रहोगी, परेशान हो। मैं कब जो होगा मैंने उनको समझा लिया, अगर वो इसमें खुश है VRS लेने में तो मुझे कोई हर्ज नहीं है
1: जी।
0: तो उन्होंने जब लिया तो यही लगा कि अब हम क्या करें। क्योंकि टाइम एक्सेस में रहता था, सुबह सुबह टिफिन बना के नहीं देना और
1: बराबर,
0: बच्चे भी बड़े हो गए, अपनी नौकरी में चले गए थे बच्चे। तो ये जो राम मंदिर का ये जब हुआ तो प्रसाद देने कुछ लोग घर पर आए, जब घर पर आए तो मैं हमने उनकी आरती उतारी।
1: अच्छा।
0: आरती उतारी और घर पे बिठा के उनको पानी वानी देने के लिए कहा, तो वो बहुत खुश हुए, RSS के लोग थे
1: जी।
0: जब वो उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद उनका

0: कि ऐसे ऐसे आप लोग उससे जुड़िए।
1: हाँ
0: मैंने कहा ठीक है जुड़ेंगे, आप लोग पहले घर पर आओ। ये हमको पता था कि आरएसएस के लोगों को घर पे बुलाना चाहिए
1: जी।
0: तो वो लोग धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे, कभी लंच पर कभी ब्रेकफास्ट पर
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा, मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा मेरे को ना कुछ करने का मन करता है अभी। हाँ। ऐसा लगता है मैं अभी कुछ कर नहीं रही, बेकार हूँ। तो वो बोले ठीक है आप ऐसे ऐसे करके आइए। हाँ। हनुमान टेकड़ी पर साइन कोलीबारा में वहाँ कैंसर पेशेंट्स का है, और आप आइए वहाँ आइए, आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको जिम्मेदारी देंगे।
1: ठीक है
0: वहाँ गए। वहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ पेशेंट्स थे, मैं सबसे मिलने जाती थी। फिर उन्होंने एक रूम का मेरे को चार्ज दे दिया।
1: अच्छा
0: कि आप इन लोगों से कांटेक्ट में रहिए, देखिए इनपे क्या चीज है, इनको मेंटली सपोर्ट कीजिए। तो हम उनसे जाके कभी कभी उनको भजन सुनाती थी, कभी उनसे बात करती थी, क्योंकि क्या
1: बात करने से भी वो खुल जाते हैं,
0: क्योंकि क्या है ना
1: इमोशनली अच्छे रहते हैं।
0: क्या है ना पेशेंट्स जो है, मुझे लगता है कि वो
1: डिप्रेशन
0: से नहीं जाता, वो सोच कर चला जाता है
1: जी।
0: फिर हम लोगों की एनकोलॉजी को लेकर क्लासेस हुई, ट्रेनिंग हुई हमारी, तीन तीन दिन की क्लास चलती थी कि उनको साथ हम लोगों को कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है, क्या उनके सामने नहीं कहना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता। उस दिन तो क्या हुआ, जब हम घर आते थे ना तो मैं सो नहीं पाती थी।
1: उनका दुख दर्द देख
0: सो नहीं पाती थी। तो ये भी समझाते थे, उन लोगों ने समझाया देखो ऐसे सेवा नहीं हो सकती है। आपको यही छोड़कर जाना होगा, यही छोड़कर जाना होगा जो भी देखा है
1: जी।
0: उनके साथ आप अच्छा एटीट्यूड कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन घर जाकर नहीं लेना है, पर आप पड़ जाओगे क्या फायदा है।
1: बराबर।
0: फिर बस वो धीरे धीरे वहाँ पता लगा हमको स्लम एरिया में स्कूल्स खोल रखे थे उन लोगों ने, फ्री ये शाला फ्री चला रखी थी स्लम एरिया के बच्चों के लिए। तो वहाँ उन लोगों ने, मैं गई देखने, कभी मैं स्लम एरिया में नहीं गई थी
1: राइट।
0: लेकिन मतलब मेरे को दिक्कत भी लगती थी, मुंह बंद करके जाती थी कई बार, और कई बार बहुत कीचड़ नीचे भी होती थी, तो शूज पहन के साड़ी पहनना बंद कर दिया था, टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिया था।
1: हाँ।
0: गिरे ना कहीं
1: जी।
0: और वो बिल्कुल ऐसी रेलिंग होती थी कि देखकर लगता था कैसे
1: रहते हैं
0: हम, इतने बड़े बड़ों में रह के लगते हैं हमको ये परेशानी, वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं पर्सनली उन लोगों से इतनी अटैच हो गई, उन लोगों ने फिर मेरे को निरीक्षण बना दिया।
1: अच्छा
0: 35 शालाओं का निरीक्षण था। तो जो हम लोगों को मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे, बस इसी तरह से धीरे धीरे करके
1: वो समाज कार्य बढ़ता गया आपका।
0: किशोरी वर्ग शुरू किया फिर हम लोगों ने, जैसे किशोरी बच्चों के लिए 8 वर्ष से और 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है तो उनको सेव करना, उनको गाइड करना है
1: राइट।
0: तो वो भी
1: करते हैं।
0: तो बस सब काम होते थे घर के भी, और बहुत एक्टिव रहती थी, ऐसा नहीं था कि कोई काम छोड़ के जा रही हूँ, का भी सारा काम होता था
1: बराबर,
0: और आके बस आराम।
1: और आप ज्यादा
0: सोते थे।
1: हाँ।
0: मतलब बहुत रिलैक्स होता था कि हमने हमारे
1: कुछ तो किया
0: तो हुआ।
1: तो अभी अंत में आपकी एक सुंदर सी कविता वापस सुनते हैं और ये जो शो का अंत करते हैं। ठीक है
0: ठीक जी, थैंक यू।
1: आप कौन सी कविता पढ़ना चाहोगे
0: आप बताओ।
1: जिंदगी के बारे में, अभी हम जिंदगी के बारे में इतनी
0: जिंदगी
1: के बारे में सुनते हैं।
0: ये कर लेगी छोटा सा है
1: जी,
0: चलेगा
1: या
0: जिंदगी है तो सब कुछ है कहते हैं ना
1: जी।
0: जिंदगी, इसके लिए मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत छोटी सी, शायद आपको पसंद आए
1: जी। बिल्कुल।
0: जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए मैं प्यार लाई हूँ, ये घड़ी, ये धूप, ये दिन, ये रात, कल भी आई थी,
1: आज भी आई है,
0: कल भी आई थी और आज भी आई है, किसी को ये सिंहासन देगी और किसी के लिए बेबसी देगी। ये सूरज जो सिर पे चढ़ा है शाम को पाँव में उतर जाएगा, इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा।
1: क्या बात।
0: इसी तरह ये सांस का राही क्या पता किस पाँव पर रुक जाएगा। गीत गाओ स्नेह का संसार लाई जिंदगी मैं तेरे लिए
1: प्यार लाई। क्या बात।
0: नई आशा, नए सपने, नए संकल्प, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मैं बुलंदी का सघन विस्तार लाई हूँ, मुस्कराओ मुस्कराओ आज मैं उपहार लाई हूँ, जिंदगी तेरे लिए
1: मैं प्यार लाई हूँ। क्या बात है, कितना पॉजिटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, मतलब जिंदगी के ऊपर अपने बहुत अच्छा अच्छे से लिखा है। और आज हमारे आचार्य 90 FM से आप जुड़े हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप ऐसे ही लिखते रहिए, मिलते रहिए और हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहिए। थैंक यू सो मच जी।

0: हेलो हाय लिसनर्स, दिस इज आरजे कोमल और हमारा आज का जो सेगमेंट है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बैसाखी एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में आज हम बहुत कुछ जो है इन्फॉर्मेटिव बातें जो है वो आज हमें पता चलने वाली है. सो ये पॉडकास्ट और ये जो सेगमेंट है वो स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए दो स्टूडेंट्स है. एक वही स्टूडेंट जिसे आप हमेशा जानते हो, मिलते हो, जिसकी आवाज आप सुनते हो, सो वो है हमारी इंटर्न सारा कुरैशी और उसके साथ साथ जो फिलहाल 12th साइंस कर रही है फ्रॉम स्वामी विवेकानंद जूनियर कॉलेज से, जसलीन कौर. सो जसलीन एंड सारा के साथ हम एक स्पेशल सेगमेंट जो है वो आज यहाँ पे करने वाले हैं. जैसे कि आप सभी को बताया कि आचार्य 90 FM पे रेडियो पर हम लोग जो है हमेशा अलग अलग सेगमेंट के जो इंटरव्यूज रहते हैं, पॉडकास्ट रहते हैं, वो हमेशा करते रहते हैं. एक अलग सेगमेंट्स और अलग टॉपिक लेकर हम आपके साथ हमेशा मिलते रहते हैं. लेकिन आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा अलग है. बहुत से लोगों को बैसाखी के बारे में कुछ ज्यादा बातें पता नहीं होती है. तो बैसाखी क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसी के बारे में जो आज हमें जो ये स्पेशल सेगमेंट में जो है वो बातें जो है वो पता चलेगी. ये त्योहार न केवल नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है बल्कि इसका धार्मिक, ऐतिहासिक और ज्योतिषीय महत्व भी बहुत गहरा है और इसी दिन से 100 नववर्ष की शुरुआत भी होती है. तो पंजाब के साथ साथ अभी हम लोग पंजाब में तो ये मनाते ही है लेकिन इसके साथ साथ मुंबई में भी देर आर सो मेनी पीपल जो बैसाखी बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं. सो जसलीन वेलकम टू आचार्य 90 FM. और यस, सो मैं अभी सारा को रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे का जो भी ये सेगमेंट है वो जसलीन के साथ यहाँ पे करें.
1: आई कंटिन्यू फॉरवर्ड विद जसलीन. थैंक यू कोमल मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग व्हाट इज बैसाखी टू आवर व्यूअर्स एंड making Jasleen comfortable here. So, let's start.
2: Yes.
1: So, very first question. What is Baisakhi?
2: Baisakhi is basically a grand celebration in a farmer's family in Punjab. That rabi crop jo rehti hai, that is basically wheat. Uski harvesting hoti hai wo time pe.
1: Now, let's see the next question. What are the key traditions followed during Baisakhi?
2: Jo key traditions hote hai, wo hote hai या तो एक तो राइपनिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ राबी क्रॉप हो गया और दूसरा नगर कीर्तन होता है जिसमें हमारे जो गुरु साहब होते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी, उनको एक सजी हुई पालकी में बिठा के पूरे नगर में से घुमाते हैं इन हजूरी ऑफ पांच प्यारे साहिबान, वो होता है. सेकेंडली वी हैव दिस निशान साहब की सेवा जो कि होता है, जो हमारे निशान साहब होता है उस पर जो कवर होता है जिसको चोला साहब बोलते हैं, उसकी चेंज होता है, उसे प्रॉपरली उसे रहत मर्यादा के अनुसार साफ करते हैं, बदलते हैं और ये सेवाएं होती है.
0: जैसे मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे रहते हैं जो फेस्टिवल में लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, घर घर से शुरुआत होती है, घर में भी सेलिब्रेशन होता रहता है, तो बैसाखी के टाइम पे आप कैसे ये सेलिब्रेट करते हो? बैसाखी घर से शुरुआत कैसे होती है और फिर बाहर जाके आप सब लोग कैसे मिलते हो?
2: हमारे घर में जैसे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं, हम वो उसका सेवन करते हैं और गुरुद्वारे में जाके हम सेवा करते हैं, जो कथा कीर्तन होता है वो सब सुनते हैं वहां पे. सो बेसिकली हमारी जो बैसाखी होती है वो गुरुद्वारे में होती है.
1: इट श्योरली साउंड सो इंटरेस्टिंग एंड आई रियली विश कि हम भी नेक्स्ट टाइम आपके साथ बैसाखी सेलिब्रेट करें. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई बैसाखी कंसिडर अ हार्वेस्ट फेस्टिवल?
2: सो जो हमारी राबी क्रॉप होती है पंजाब हरियाणा के रीजन्स में बहुत

0: उगती है वो टाइम पे, बेसिकली फ्रॉम द विंटर सीजन टू द समर सीजन. और ये जो मिड अप्रैल होता है, जो सोलर ईयर का स्टार्ट होता है, उस टाइम पे हम उसे हार्वेस्ट करते हैं. सो बैसाखी इज बेसिकली हार्वेस्टिंग द राबी क्रॉप.
1: सो मुझे लगता है बैसाखी अगर आप आपके गांव में मनाओगे तो वो एक थोड़ा वो वहां का माहौल काफी अलग रहेगा. अभी मुझे बस यही क्वेश्चन आ रहा है कि हमने ये सब मेंशन किया आपने कि राबी क्रॉप के बारे में और जो भी हार्वेस्टिंग है वो वहां पे होता है तो ये सेलिब्रेट करते हैं. बट बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर जो लोग अपने गांव से दूर रहे हैं, पंजाब से दूर है, अपनी खेती से दूर है, अपने गांव के घर से दूर है, लाइक आप भी मुंबई में रहते हो, सो यहाँ पे कैसे होता है वो सब?
0: यहाँ पे मतलब गुरुद्वारों में प्रोग्राम होते हैं उस दिन पे स्पेशली. मतलब हमारी जो सिख कम्युनिटी यहाँ पे है वो एक मतलब कॉमन प्लेस पे सब इकट्ठा होते हैं वो टाइम पे. जैसे कोई ह्यूज ग्राउंड्स हो गए, ह्यूज प्लेसेस हो गई, वहां पे सब इकट्ठे होके वहां पे सबका साथ में होता है.
1: आप और आपके गांव को भी मिस करते होंगे.
2: सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What happened on Vaisakhi related to the formation of Khalsa?
0: So, जब ये बात है 1699 की, तो उस टाइम पे हमारे जो 10th गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने मतलब काफी संगतों को आनंदपुर साहिब में गैदर किया था. एंड ही केम आउट विथ अ नेक्ड सोर्ड इन हिज हैंड और उन्होंने बोला कि मुझे एक सीस चाहिए धर्म के लिए. सब वहां डर गए थे कि गुरु साहब अचानक से क्या मांग रहे हैं. बट फिर एक उनमें से उठे जिनका नाम था दयाराम, वो उठे और उन्होंने बोला मैं अपना सीस दूंगा. तो जब गुरुद्वारा उनको लेके अंदर गए गुरु साहब, फिर वो जो बाहर आए तो उनकी सोर्ड पूरी ब्लड में थी. तो सब और डर गए और उन्होंने आके बोला कि मुझे एक और सीस चाहिए. सब फिर से डर चुके थे. ये कुछ पांच बार हुआ तो पांच मैन उठे थे, पांच मैन आए थे. तो वो सब अलग अलग जाति के थे, अलग अलग मतलब अलग अलग रीजन्स के थे, अलग अलग जगह से आए थे वो लोग. तो गुरु साहब ने उन सबको खंडे बाटे की पॉल दैट इज अमृत वो शकाया और उन सबको खालसा बनाया. खालसा इज बेसिकली समवन हु इज फाइटिंग फॉर जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी.
1: ओके, सो ये स्टोरी है इसके पीछे.
0: यस,
2: इफ यू हैड टू डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ वैसाखी इन जस्ट 3 वर्ड्स आप क्या कहोगे?
0: ह्यूमैनिटी, ग्रेटिट्यूड एंड जॉय.
1: क्या बात है. ओके, सो बैसाखी के टाइम पे एनी कोई स्पेशल फूड जो है वो आप ज्यादा प्रिफर करते हो? जैसे कि सारा बिलोंग्स टू मुस्लिम रीजन, सो ईद रहता है तो बहुत सारे स्वीट्स एंड स्पाइसी फूड्स भी रहता है. सो आपके यहाँ पे बैसाखी के टाइम पे ऐसा कोई स्पेशल डिश है जो बनता है और जो मस्ट ही है कि ये बनना ही है?
0: यस, पहले तो सबसे पहले हमारा होली कड़ा प्रसाद जो कि घी और आटे का होता है. और उसके बाद एक और चीज होती है जो बहुत ट्रेडिशनल है, जैसे कि मीठे चावल जो कि येलो स्वीट राइस टाइप होते हैं, जो फेस्टिवल का महत्व रिजेंबल करते हैं एज दे आर येलोइश इन शेड. तो वो गोल्डन खेती दिखाते हैं गेहूं की जो खेतों में लगी रहती है.
1: ओके,
0: एंड अदर्स आर लाइक छोले भटूरे एंड लस्सी विच आर वेरी कॉमन.
2: सो व्हाट्स योर फेवरेट फूड?
0: आई लाइक द कड़ा प्रसाद ऑफ कोर्स एंड द स्वीट राइस.
2: ओके,
1: सो जसलीन आपने मतलब बहुत बार बहुत फेस्टिवल्स हम लोग देखते हैं, बट उस फेस्टिवल के पीछे हिस्ट्री क्या है, वो फेस्टिवल एग्जैक्टली किस तरीके से मनाया जाता है वो हमें पता नहीं रहता है. सो बैसाखी के बारे में दैट अदर देन जो लोग हैं जो नॉन पंजाबी है जिनको ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे मनाते हैं, मुझे लगता है हमारे लिसनर्स को वो इन्फॉर्मेटिव जो है ये सेगमेंट रहा होगा. बट अदर देन दिस आप भी ये रीजन से बिलोंग करते हो, आप जाते जाते कुछ ऐसे लाइन्स जैसे कि आपने मुझे बोला बिहाइंड द कैमरा कि यू हैव सर्टन पॉइंट्स और सर्टन लाइन्स पोएम्स वगैरह विथ यू, सो हाउ यू डिस्क्राइब दिस?
0: आई विल से इट, जप जाप सवैये चौपई आनंद सब पूरा पाड़ के, खंडे बाटे दा तैयार करे अमृत बोल दे गुरु जी खड़े के, जी बोल दे गुरु जी खड़े के, पंजा सिंघा नु शका के अमृत आखे आपे आरा खालसा, बाजा वाले पिता गुरु दशमेश ने साजे आने आरा खालसा.
1: बहुत प्यारा लगा. सॉरी बट मुझे इसका मीनिंग आप बताओगे?
0: इसका मीनिंग वही है जो मैंने आपको अभी खालसा वाले पार्ट में कहा था. दिस मतलब हमारी जो खालसा रहता है उसको रहता ही है कि ही हैज टू से मतलब ही हैज टू रिसाइट 7 वाणीज इन अ डे, 5 इन द मॉर्निंग, 1 इन द इवनिंग एंड 1 एट द नाइट व्हाइल ही इज गोइंग टू स्लीप. सो पहली जो 5 वाणियां रहती है वो पढ़ते समय खंडा जो रहता है वो बड़ा सा पॉट उसमें विथ जो बाटा रहता है खंडे घुमाते हुए उसमें पतासे और मतलब पानी का मिक्सचर रहता है वो. तो ये जप, जाप, सवैये, चौपाई और अनंत साहब ये हमारी 5 वाणियां हैं जो पढ़ते हुए वो मिक्स करते हैं और जो अमृत छकने आते हैं उन सबको पिलाते हैं. और बाकी का जो सेकंड स्टैंजा था वो ये कहता है कि मतलब वही जो खंडा जिससे हम मिक्स करते हैं और बाटा नीचे का जिसमें वो होता है सोल्यूशन, yes. तो उसका तैयार किया हुआ अमृत रहता है वो. फिर जो पंजा सिंगा मतलब जो 5 प्यारे होते हैं गुरु के, जो 5 सिंगों को पहले शकाया होता है गुरु साहब ने, उनकी बात की होती है. उनको गुरु साहब ने प्यारा खालसा मतलब मेरे 5 प्यारे बोला था, द 5 बिलव्ड वन ऑफ गुरुज.
1: क्या बात है. सो मुझे लगता है जो हम लोग सिर्फ यू नो कैलेंडर में देखते हैं या फिर वी जस्ट नो वी जस्ट हर्ड अबाउट बैसाखी, तो बैसाखी एग्जैक्टली क्या है, वो किस तरह से मनाई जाती है, उसके पीछे की जो एक हिस्ट्री है. मुझे लगता है आपकी एज बहुत ही कम है बट ये एज में यू नो एवरीथिंग अबाउट बैसाखी, अबाउट योर रिलीजन, अबाउट योर कल्चर. ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज के जनरेशन में ये संस्कार लाना एक बहुत बड़ी बात होती है. सो थैंक्स टू अर्चना मैम एंड योर डैड. सो बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगी कि जसलीन अर्चना मैम जिसे आपने सुना है, सो वो हमारे कोऑर्डिनेटर है बीएमएस के, सो उनकी बेटी है. सो यस थैंक्स टू अर्चना मैम सर एंड थैंक्स टू जसलीन कि ये एक यू नो एक बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज में ये सब सुनना और जो भी आपने इन्फॉर्मेटिव बातें बताई. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू सारा.
2: थैंक यू.
1: तो ये हमारा जो स्पेशल सेगमेंट था अबाउट बैसाखी, बैसाखी क्या है, क्यों मनाया जाता है. तो मुझे लगता है हमारे बाकी लिसनर्स को भी अभी बैसाखी के बारे में बहुत सी जानकारी होगी ही. सो ये स्पेशल सेगमेंट आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी के लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9167993999. और यही नेट नोट पे मैं आरजे कोमल सारा के साथ और जसलीन के साथ यहीं पे आपको अलविदा कहती हूँ. आप आपके लैंग्वेज में अलविदा मतलब टाटा बाय बाय कैसे करते हो? सो आपके लैंग्वेज में कुछ सोचा है?
2: वी जस्ट से सत श्री अकाल.
1: क्या बात है, सत श्री अकाल जी.

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो कहानियों का गुल्लक में। कहानियां जो हमारे दिल को छू लेती है, कहानियां जो कभी कभी खुशी के पल देती है तो कभी कभी गम के पल भी, कहानियां जो हमें जीने का मकसद सिखाती है और कहानियां हमें उन दिनों की याद दिलाती है जो हमने बचपन में जी होती है या फिर हमारे खुशियों के पल में या फिर बहुत सारे पल में। तो आइए दोस्तों, आज मैं सुनाता हूं आपको एक ऐसी कहानी, होटल शालीमार। होटल शालीमार कहानी है एक ऐसे कपल की जो गांव से आते हैं और बहुत ज्यादा गरीब है। विकास इस कहानी का सबसे प्रमुख किरदार और साथ ही साथ उसकी पत्नी, वो भी है इस कहानी का प्रमुख किरदार, सुमन। विकास बचपन से ही अनाथ, बूट पॉलिश करने वाला एक साधारण सा लड़का, बहुत सिंपल। दिन की आमदनी लगभग 100 रुपए और बड़ी मशक्कत के साथ उसकी शादी हो जाती है सुमन के साथ। सुमन जिसने अपनी पढ़ाई 3री-4थी कक्षा तक ही की होती है और उसके बाद बड़ी गरीबी होने के कारण अपने फैमिली के साथ वो छोटे मोटे काम में लग जाती है, कभी खेती में, कभी किसी और कबाड़ी में या कभी किसी और मजदूरी में। दिन गुजरे, साल गुजरे और फिर देखते देखते जब सुमन बड़ी हो गई तो उसके घर वालों ने उसकी शादी विकास से कर दी। अब शादी होने के बाद विकास की एक ख्वाहिश थी कि वो अपने बेबी को कुछ ना कुछ तोहफा जरूर दे, पर उसकी आमदनी इतनी ना होने के कारण उसने सुमन से पूछा कि सुमन, मुझे आपको देने के लिए फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी जो भी इच्छा हो वो पूरी कर सकूं। सुमन मुस्कुराई और उसने विकास से कहा कि मुझे कोई भी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, तुम्हारा साथ काफी है मेरे लिए। विकास मुस्कुराया और कहा कि मैं जानता हूं मेरा साथ काफी है तुम्हारे लिए, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी कुछ ना कुछ जरूरतें हैं या कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर चाहिए जो तुम मुझसे मांग नहीं रही। सुमन एक पल के लिए सोचने लगी और सोचते सोचते सुमन ने विकास से कहा कि मेरी बचपन से ना एक छोटी सी ख्वाहिश है कि वो जो नुक्कड़ पे आप होटल देख रहे हो वहां पे जाके खाना खाना है। मैंने कई बार वहां से गुजरते समय देखा है कि जो हमारे गांव के बड़े लोग हैं वो जाते हैं वहां पे अपनी परिवार के साथ और खाना खाते हैं, बच्चे खुश होते हैं, वहां पे तरह तरह के पकवान मिलते हैं, तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। मैंने कभी उस होटल को अंदर से देखा नहीं है और मैं नहीं जानती कि वहां के पकवान कैसे लगते होंगे, क्या वो जैसे हम पकवान बनाते हैं वैसे ही लगते हैं या फिर वो कुछ अलग से लगते होंगे। बस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि किसी दिन मैं उस होटल में जाके एक बार का खाना खाओ। तो विकास कहते हैं ठीक है, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, पर इसके लिए मुझे तुम्हें थोड़ा समय देना पड़ेगा। सुमन की ये बातें उस दिन पूरी रात विकास के दिमाग में चलती रही। विकास इधर से उधर करवटें बदलते रहा, छत को देखता रहा और सोचता रहा कि वो कुछ भी करके, कैसे भी करके सुमन की यह ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। पर विकास के पास ज्यादा पैसे ही नहीं थे, वो दिन के 100 रुपए कमाने वाला लड़का कैसे एक बड़े से और महंगे से होटल में जाके अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करेगा। और यही कश्मकश में, यही सोच में वो पूरी रात ढल गई। फिर सवेरा हुआ और सवेरे के साथ आई एक उम्मीद की नई किरण।
उसने सोचा कि अगर मैं कम कमाता हूं तो क्या हुआ, मैं थोड़े दिन एक दो नौकरी और कर लूंगा जिससे मैं कुछ ज्यादा पैसे कमाऊं और उससे अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करूं। तो वो अपनी नई नौकरी के चक्कर में वो निकल पड़ा और उसे दो नौकरियां मिली। एक नौकरी ऐसी जो माल से भरी हुई गाड़ियां आती है गांव में, तो उसे खाली करने के लिए मजदूर की जरूरत होती है, तो वहां पर वो जाता है और उसने वहां पर वो नौकरी पाई। और नौकरी पाने के बाद वो हर रोज सुबह वहां पर जाकर माल ढोने लगा, वो जो माल से भरी हुई गाड़ियां थी उन्हें खाली करने लगा और दिन के उसे 40 रुपए मिलने लगे। उसके साथ ही साथ उसने उसके एक दोस्त संदेश उससे कहा कि अगर तू बुरा ना माने तो कुछ दिन के लिए और कुछ घंटे के लिए मुझे अपनी रिक्शा चलाने दे, तो मेरी एक जरूरत आन पड़ी है, मैं उसके लिए थोड़े पैसे जमा करना चाहता हूं, तो संदेश तू मुझे मदद करेगा क्या? संदेश और विकास बचपन के दोस्त थे, तो संदेश ने कहा कि जरूर मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, पर तू पहले मुझे ये बता कि तू रिक्शा क्यों चलाना चाहता है, जब तू एक नौकरी तो कर रही है, बूट पॉलिश करता ही है तू, उसमें तेरा पूरा टाइम जाता है और साथ ही साथ अभी तूने एक और नौकरी कर रहा है गाड़ी खाली करने की, तो फिर अभी ये तीसरा काम क्यों करना चाहता है? तो फिर विकास संदेश से पूरा मांजरा बयां करता है कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी चीजें हैं और ऐसी अपनी बीवी की ख्वाहिश है जो उसे पूरी करनी है। तो इस बात में संदेश बड़े मजाकिया तौर पर उसे कहता है वारे जोरू के गुलाम और उसकी चुटकी लेता है।

0: पर अंदर ही अंदर संदेश को बड़ी खुशी महसूस होती है कि विकास बहुत दिनों बाद खुश दिखाई दे रहा है और वो चाहता है कि ठीक है ये खुशी उसके जिंदगी में बरकरार रहे। तो संदेश उसे कह देता कि विकास तू जरूर मेरी रिक्शा लेके जा सकता है। अब पहला दिन आता है नौकरी का जब विकास जाकर गाड़ी खाली करता है, वहां से 40 रुपए कमाता है, और शाम को जब वो संदेश की रिक्शा लेकर जाता है तो एक दो किराए मिलते हैं, उसमें 60 रुपए की मजदूरी होती है, तो लगभग बूट पॉलिश के 100 रुपए और ये लगभग 100 रुपए मिला के एक दिन में उसके पास 200 रुपए जमा हो जाते हैं। वो 200 रुपए जब वो लेकर आता है तब वो सोचता है कि अभी 200 रुपए रखे कहाँ। तो वो घर पूरा ऊपर से नीचे तक छान मारता है, इधर से उधर देखता है और सोचता है कि पैसे कहाँ रखूं कहाँ रखूं, किसी डिब्बे में रख दूं, पर डिब्बे में रख दूं तो शायद ये पैसों का पता सुमन को चल जाएगा और फिर सुमन पूछेगी कि क्यों पैसे जमा कर रहे हो। तो विकास सोचता है कि मैं ही कुछ एक तरकीब लाता हूं। तो विकास क्या करता है, कबाड़ ओपन करता है, जो उसके घर में एक छोटी सी अलमारी रखी होती है जो काफी पुरानी होती है, टूटी फूटी होती है, और जब वो अलमारी खोलता है तो देखता है उस अलमारी में चूहे इधर से उधर कूद रहे हैं। तो वो ये जरूर जान लेता है कि अगर इस अलमारी में मैं ऐसे ही पैसे रख दूं तो ये चूहे मेरे पैसों को कतर देंगे और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो विकास बाहर जाता है और एक छोटा सा गुल्लक खरीद के आता है और उस गुल्लक में वो पैसे रखता है और एक ताला लाता है, उस अलमारी को वो लॉक कर देता है ताले से, ताकि सुमन ना जान पाए कि विकास सुमन की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे जमा कर रहा है।
1: कितने सालों में ये फीलिंग ही भूल गया।
2: कौन सी फीलिंग?
1: खुश नहीं।

पहले दिन तो 200 रुपए कमा लेता है, फिर दूसरे दिन जब जाता है विकास अपने काम के लिए, वही माल से भरी हुई गाड़ी खाली करने, तो देखता है कि वो गाड़ी पहले से ही खाली हो चुकी है और आज के दिन का काम खत्म हो गया। अब विकास थोड़ा मायूस हो जाता है। उसके पास एक ही जरिया होता है कि आज के पैसे वो जब शाम में रिक्शा चलाएगा तो उससे कमा लेगा, पर जब वो रिक्शा लेकर निकलता है शाम में तो उसमें भी उसके पास पैसे नहीं आते और उस पूरे दिन की कमाई लगभग जो बूट पॉलिश से आती है उसके जो रोज का काम है 80 रुपए। तो 2 दिन में ऐसे विकास 280 रुपए जमा करता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक हफ्ता गुजरता है। एक हफ्ते में बूट पॉलिश के काम से लेकर छोटे से लारी को खाली करने से लेकर माल की गाड़ी को खाली करने से लेकर और रिक्शा चलाने से लेकर पूरे हफ्ते में वो लगभग 700 रुपए जमा कर पाता। और वो ये जरूर जानता है कि अगर उसे होटल शालीमार में अपनी बीवी को लेके जाना है तो लगभग 2 से 2500 रुपए की उसे जरूरत है। एक हफ्ते में अगर वो 700 रुपए जो जमा कर पाया है, अगर यही काम वो निरंतर करे तो शायद एक महीने में वो 2 से 2500 रुपए जमा कर पाए। ऐसे ही करते करते करते करते करते करते पूरे 18 दिन हो जाते हैं। और 18 दिन में जब विकास घर आता है और पैसे गिनने लगता है तब लगभग 2283 रुपए वो जमा कर लेता है। और इतने पैसे काफी होते हैं कि वो अपने को वो अपनी बीवी को लेके जाए, और इतने पैसे काफी होते हैं कि वो अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा कर सके। और जब वो पैसे देखता है तो वो बड़ा खुश होता है, जैसे बच्चा किसी खिलौने की जिद करता है और उसे वो खिलौना मिल जाता है तो वो बच्चा किस तरीके से खुश होता है। या फिर आप बरसों से किसी

वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज ये शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि पिछली कहानी में हमने सुना था कि सुमन और विकास, यानी विकास किस तरह अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कड़ी मशक्कत करता है और कैसे कैसे पैसे जमा करके अपनी बीवी को होटल शालीमार लेके जाने की उसकी जो ख्वाहिश होती है वो पूरी करता है। अब दोनों जो होटल शालीमार पर आके पहुंच गए तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो सुनते हैं कहानी का अगला भाग। विकास और सुमन अब होटल के बाहर खड़े हैं, एक आलिशान होटल जो मुंबई में किसी JW मैरिट होटल से कम नहीं, ठीक उसी तरह। दोनों बाहर खड़े, दोनों के मन में न जाने कितने अनगिनत सवाल है, ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद उन्हें कोई ना दे सके, वो खुद भी नहीं जानते कि इन सवालों का जवाब ढूंढे कहां से। जो सोशल स्टिग्मा होता है वो उन पे आ गया था, जो सोशल टाबू हो जाता है कि गरीब लोग बड़े होटल में नहीं जा सकते। हाँ, जाने शायद बचपन में उन्होंने ये सुना हो तो इसीलिए वो जिस तरीके से धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहे थे उस होटल की ओर, उनके दिल में ना जाने कितने कश्मकश, कितने सवाल, कितनी बेचैनियां उमड़ रही थी अंदर, एक सैलाब उमड़ रहा था कि वो सच में जाए या ना जाए। सुमन ने विकास का हाथ थामा और कहा कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए? विकास ने जवाब दिया। वो क्या है ना कि आप तो जानते ही हैं कि हम कितने गरीब हैं और यहां पे आने वाले सारे अमीर, तो क्या हमारा जाना सही होगा? लोग हमें किस नजर से देखेंगे? आपको नहीं लगता कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें वापस लौट जाना चाहिए घर? बड़ी धीमी आवाज से सुमन ने कहा यह। भला क्यों हमें लोग बुरी नजर से देखेंगे या ऊंच नीच वाली नजर से देखेंगे? हमारे पास पैसे है भाई, और हम थोड़ी किसी का फ्री में खाना खाने आए हैं ना, हम तो पैसे लेके आए हैं, और पैसे है तो खाना खाया जा सकता है। यहां पे क्या, लंदन में भी खाना खाया जा सकता है अगर पैसे है तुम्हारे पास। बड़ी मजाकिया तौर पर विकास ने सुमन से कहा, और यही कुछ चीजें थी, यही विकास का कहा हुआ था जो सुमन के अंदर उसने हौसला पैदा किया, और दोनों ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, वो जाएंगे अंदर। धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे कदम दोनों के बढ़ते रहे होटल की ओर, और जब होटल के दरबान के पास पहुंचे तो विकास ने अपनी जेब में से, ऊपर वाली जेब में से, शर्ट की जेब में से 50 रुपए निकालकर, जो शायद उसने पूरे दिन भर में कमाया था बूट पॉलिश करके, वो 50 रुपए जो उसने उसके ऊपर की जेब में रखे थे वो निकालकर रख दिया दरबान के हाथ में, ताकि दरबान उन दोनों को अंदर जाने से रोके नहीं। अब ये बात विकास को संदेश ने बताई थी कि अगर तुम कभी भी किसी बड़े होटल में जाते हो और शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पहनावे से या तुम्हारे रंग रूप से कोई तुम्हें बाहर निकाले, तो सबसे पहले एक चीज जरूर कर लेना कि किसी भी होटल के दरबान को कुछ पैसे उसके हाथ में रख दो, तो वो आपको कभी रोकेगा नहीं, वो आपको बड़ा आदमी समझेगा। और यही विकास ने किया, और दरबान के हाथ में 50 रुपए रख दिए, सुमन और विकास दोनों अब अंदर चले गए। अब दोनों अंदर चले गए, देख रहे हैं कि जाके कहां बैठे, कहां बैठे, कहां बैठे, समझ में नहीं आ रहा। कुछ टेबल खाली है लेकिन उनके ऊपर एक लंबा सा
कुछ रखा है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो उसी एक ऐसे बड़े से टेबल पर जिस पर कुछ लिखा हुआ है रिजर्व जैसा, वहां पर सुमन जाके बैठने की कोशिश करती है, उतने में पीछे से एक वेटर आता है, मैडम मैडम रुक जाइए, आप यहां नहीं बैठ सकते, ये ऑलरेडी किसी ने बुक किया हुआ है। तो सुमन एक मिनट के लिए शॉक हो जाती है कि ये क्या कह रहा है, किसी ने बुक किया, ये क्या होता है। तो वो वेटर उसे कहता है कि यहाँ पे कोई आने वाला है, उसने हमें पहले ही सूचना कर दी है कि वो यहाँ पे आएंगे और ये टेबल उनके लिए ही बुक है, आप एक काम कीजिए, वो वहां पे देखिए टेबल खाली है, वो किसी के लिए बुक नहीं है, आप और सर वहां पर जाके बैठिए। अब जिंदगी में पहली बार किसी व्यक्ति ने विकास को और सर बोला था, तो विकास काफी खुश हुआ कि हाँ चलिए किसी ने तो हमें सर बोला। अब विकास और सुमन बैठे हैं दोनों उस टेबल पर इसी इंतजार में कि खाने में क्या मंगाए। अब वो जो बड़ा सा मेन्यू कार्ड उनके सामने रखा है वो तो उनको समझ नहीं आएगा कि इसमें से क्या मंगाए, क्योंकि उनको पढ़ना तो आता नहीं है और वो ठहरे देसी और बड़े सिंपल से बड़े भोले से लोग, तो उनको पता भी नहीं कि कैसे खाना मंगाया जाए यहाँ पे। तो वो विकास जो है एक वेटर को आवाज देता है भैया जी आइए, तो आजू बाजू वाले लोग उसे देखने लगते हैं। तो दूर दो टेबल छोड़कर खड़ा हुआ एक वेटर समझ जाता है कि ये नए नए आए हैं, इनको शायद से तौर तरीका नहीं पता या ये नहीं जानते कि वेटर कह के पुकारा जाता है। तो वो वेटर संदेश सॉरी तो वो वेटर विकास और सुमन के पास चला जाता है और कहता है कि बताइए आप खाने में क्या खाना चाहते हैं। विकास बड़ी धीमी आवाज में उस वेटर से कहता है भैया जी हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, और ये जो बड़ा सा ये जो कार्ड रखा है आपने हमें पढ़ना नहीं आता, तो हम नहीं जानते इसमें क्या है, पर आप अगर हमारी कुछ मदद कर दे तो हमें क्या खाना है हम आपको बता देंगे, तो उस तरीके के पकवान का आपके पास कुछ हो तो जरूर ले आइएगा। तो वेटर हंसता है और कहता है कि हाँ हाँ बताइए सर आपको क्या चाहिए, मैं वो चीजें अगर हमारे पास होगी तो मैं जरूर लाने की कोशिश करूंगा। विकास कहता है बताओ सुमन जी क्या खाना है आपको। सुमन जी कहती है हमें वो पनीर की सब्जी खानी है, मटर पनीर, पालक पनीर। तो विकास वेटर को अब ऑर्डर देने लगते हैं, एक काम कीजिए आप मटर पनीर होगा आपके पास। तो वेटर कहता है हाँ, तो मटर पनीर लाए। पालक पनीर होगा आपके पास? हाँ है, तो एक पालक पनीर और रोटी लाइएगा, रोटी आठ आठ टू रोटी लाइएगा आठ। और दाल चावल मिल जाएगा आपके पास? हाँ मिल जाएगा, हाँ तो वो लाइए। और हाँ हाँ सुनिए, ये ऑर्डर सब लाने ये सब खाना लाने से पहले वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है शिकंजी शिकंजी वो दो लाइएगा, दो बड़ी वाली बॉटल में जो आती है, एक मैडम जी के लिए और एक हमारे लिए। और जब खाना पूरा खत्म हो जाएगा ना तो मैडम जी के लिए चार चार आइसक्रीम लाना चार। तो वो वेटर जानने लग जाता है कि ये पहली बार आए हैं और बड़ा खुश होता है वो वेटर ये देखकर कि एक पति अपनी पत्नी के लिए किस तरीके से
उसकी जिद पूरी करने के लिए किस तरीके से होटल में आकर उसके लिए तरह तरह के

अभी तक खाना नहीं आया। तो वेटर विकास से कहता है कि सर आपको शायद पता नहीं है पर यहाँ पे जब भी आप ऑर्डर देते हो तो लगभग 25 से 30 मिनट लग जाते हैं आपका खाना आने के लिए, क्योंकि जब आप ऑर्डर देते हो तो फिर वो ऑर्डर हम लेने के बाद वो खाना पकाया जाता है फिर लाया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपका खाना अभी हम लाके आपको परोसता है। तो 15 मिनट के बाद वेटर सारा ऑर्डर लाता है। विकास और सुमन खाना खाना शुरू करते हैं। रोटी का एक एक निवाला जैसे मानो एक एक तारे विकास ने तोड़ कर लाए और सुमन के हाथ में दिए, जैसे किसी भी प्रेमिका को प्रेमी एक एक तारा तोड़कर लाके देता है और उसके हाथ में रखता है और प्रेमिका कितनी खुश होती होगी वो एक एक तारे को देखकर, ठीक उसी तरह रोटी का एक एक निवाला सुमन को वही याद दिला रहा था कि मानो विकास ने आसमान से न जाने कितने तारे तोड़कर लाए हैं और आज उसके कदमों में बिछा दिए, आसमान का पूरा चांद उसके कदमों में बिछा दिया उसकी वो एक ख्वाहिश पूरी करकर। अब खाना खत्म हो गया, खाना खत्म होने के बाद आइसक्रीम आई, अब आइसक्रीम भी खत्म हो गई, अब आइसक्रीम खत्म होने के बाद दोनों ने चाहा कि हाथ धोया जाए अभी, तो उतने में वेटर ने गर्म पानी से भरा हुआ बाउल उनके सामने लाके रखा और एक प्लेट में 8-9 पीसेस ऑफ लेमन्स लाके रखे। अब उनको क्या लगा वो लेमन उस बाउल में निचोड़ना है और पी लेना है, तो उसने कहा कि वेटर से विकास ने कि भैया हमने तो ये नींबू पानी ऑर्डर नहीं किया था आपने क्यों लाया, तो वेटर हंसने लगा बोला ये नींबू पानी नहीं है, ये जो आप कटोरा देख रहे हैं ये गर्म पानी का कटोरा, इसमें आप अपने हाथ धोइए, हाथ धोने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है और आपके उंगलियों पर जो चिपचिपापन है तो ये आप नींबू अगर इस पे मसलेंगे तो ये चिपचिपापन आपका चले जाएगा और वो हाथ में धोते रहिए, हाथ धोते रहिए उस कटोरे में। तो ये पहली बार हो रहा था विकास और सुमन के साथ, तो ये काफी अद्भुत अनुभव था उनके लिए और वो बहुत ज्यादा एकदम एक बच्चे की तरह एक्साइटेड थे कि देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, हमको कहीं जाना नहीं है और हमारे हाथ धोने के लिए यहाँ पे कटोरा भी लाया जा रहा है जिसमें हम हाथ धो रहे हैं, नींबू लगा रहे हैं, ये बहुत एक अलग अनुभव था उनके लिए। तो अब हाथ धो लिया, खाना खा लिया, आइसक्रीम खा लिया और उसके बाद बारी आई बिल देने की, तो बिल देने के लिए विकास ने कहा वेटर से कि हमें बता दीजिए कितना पैसा हुआ है तो हम दे दे और जाएं यहां से। तो वेटर चले जाता है और बिल लेके आता है, और बिल लेके आता है तो लगभग 1800 रुपए बिल हुआ होता है और विकास के पास तो 2250 रुपए है, तो वो तो खुश हो जाता है कि चलो 450 रुपए मेरे पास बच ही गए। अब वो बिल लिखता है और अपनी जेब में सीधे साइड वाले पैंट की जेब में जब वो हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए तो वो देखता है कि उसका जो हाथ है वो पूरा आर पार चला गया, यानी जो पैंट विकास ने पहनी है वो फटी हुई है। अब विकास बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है, वो अपने दूसरे जेब में हाथ डालता है, वहां पे उसे पैसे नहीं मिलते, वो पैंट के पीछे वाले जेब में हाथ डालता है, वहां उसे पैसे नहीं मिलते, वो धीरे से सुमन से कहता है कि सुमन जी हमने आपको पैसे दिए क्या रखने, सुमन जी कहती है नहीं आपने हमें तो पैसे नहीं दिए, आपने आपके पैंट की जेब में रखे थे ना निकलते समय, तो बीवी को कोई चिंता ना हो इस कारण विकास जोर से हंसता है हाँ हाँ हाँ।

0: मेरे जेब में। मैं तो देख रहा था कि कहीं तुम परेशान तो नहीं होती अगर मैं ऐसे कहूँ तो। और अंदर विकास बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि तुम 2 मिनट रुको हम आ रहे हो। ये कहकर विकास बाहर जाता है और देखता है कहीं वो पैसे रिक्शा से उतरते समय उसने गिराए तो नहीं या वहां गिर तो नहीं गए। तो वहां पे जाके पूरा देख के आता है पर उससे वो पैसे मिलते नहीं है। वो जहां जहां से चल के आया ठीक उसी तरीके से वहां पे फिर से दोबारा चल कर जाता है। देखता है कि पैसे उसे मिल गए पर वो पैसे उसे मिलते नहीं है। और वो परेशान होकर 10 मिनट बाद जब फिर से दोबारा होटल में आता है तो वेटर भैया को दोबारा आवाज लगाता है कि हमारे पास पैसे थे पर हम नहीं जानते कि ये बिल भरने के लिए जो हम आपको पैसे देने वाले थे ये कहाँ गिर गए। हम घर से लेके निकले थे पैसे, पैसे हमारे पास मौजूद थे पर जब हमने ये आपको पैसे भरने के लिए जेब में हाथ डाला तो हमारी पतलून की जेब फटी निकली। विकास वेटर से कहता है, वेटर कहता है कि देखो हम जानते हैं ये तुम्हारे हथकंडे हैं, पहले तो एकदम अच्छा अच्छा खाना खा लो और बाद में बोल दो पैसे नहीं है और कहीं से यहां से बच के निकल जाओ। हम ठीक से जानते हैं तुम गरीबों की ये सारी हरकतें, तो चुपचाप से अपना बिल भरो और जाओ यहां से, निकलो यहां से। वेटर कहता नहीं नहीं वेटर भैया, सच में हमारे पास पैसे थे, 2250 रुपए थे, हमने मेहनत से कमाए थे, हमने 2 जगह काम करके पैसे कमाए थे, हमारी सुमन के लिए कमाए थे, ये पैसे थे हमारे पास, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। हम घर से लेके निकले थे तो पैसा लेकर निकले थे, हमने अपनी जेब में ही रखा था ये पैसा पर हम नहीं जानते थे कि पतलून हमारी फटी हुई है, पैसे कहीं गिर गए हैं। आप हमारी बात का भरोसा कीजिए, हम आपके पैसे चुका देंगे, फिर से दोबारा मेहनत करेंगे, लेकिन आप हमारी बातों को समझिए, अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हमें माफ कीजिए, हमें जाने दीजिए। विकास गिड़गिड़ाकर रोकर विनती करता है उस वेटर से कि वो उसकी बात मान जाए और किसी तरीके से सुमन और विकास को घर जाने के लिए दे दे। वेटर नहीं मानता, वेटर कहता है नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, तुम्हें अब यहां पे काम करना पड़ेगा, यहां नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें अब यहां बर्तन मानने पड़ेंगे, खाना खाते समय तुम्हें नहीं सूझा कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास, अब ये सब तुम्हें सूझेगा जब तुम बर्तन मांजोगे, जब 15 दिन बर्तन मांजोगे तब जाके ये जो तुम्हारा बिल हुआ ये पूरा होगा। तो चलो उठो उठो उठो चलो बर्तन मांजने चलो। ये कहकर वेटर विकास को अभी चेयर पर से उठाने लगता है। ये सारा मांजा देखकर सुमन बहुत रोने लगती है और वो खुद को दोष देने लगती है कि ये उसी की ख्वाहिश थी जो आज उसके पति की बेइज्जती हो रही है। अगर वो अपनी ख्वाहिश नहीं बताती तो शायद ये दिन कभी आता नहीं और विकास कभी उसे वहां लेकर नहीं जाता है, ये सब मामला नहीं होता और विकास की इतनी बेइज्जती नहीं होती। सुमन इसी चक्कर में रोने लग जाती है और अपने आप को कोसने लग जाती है। उतने में विकास उससे कहता है कि सुमन जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अब शांत रहिए, कुछ नहीं होगा, आप घर जाइए, हम काम करके आ रहे हैं, किए हैं ना इसके पहले भी काम, कर लेंगे थोड़ा और काम, और आपके लिए ही तो कर सकते हैं ना काम, आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, आपको चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप हमारी अर्धांगिनी हो, धर्म पत्नी हो, अगर आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, तो आप निश्चिंत होकर घर जाइए, हम बस ये काम खत्म करके आ ही रहे घर, आप जाइए। ये कहकर विकास सुमन को होटल के बाहर जाने पर मजबूर तो कर देता है पर सुमन जाती नहीं है, वो होटल के बाहर ही विकास का इंतजार करती है। विकास अपने मायूस चेहरे को लेकर उस वेटर के साथ धीरे धीरे धीरे धीरे किचन की ओर कदम बढ़ाता है जहां पे पूरा बर्तन धोने का एक अलग सा डिपार्टमेंट है। वहां जाता है, देखता है तो न जाने सैकड़ों थालियां पड़ी हुई, बड़े बड़े पतीले पड़े हुए, न जाने कितना सामान जो धोने के लिए पड़ा हुआ है। और वो जो वेटर होता है वो कहता है कि आज तुम्हें इतना पूरा बर्तन धोना है और रोज आके यही काम करना है आने वाले 15 दिनों तक, तब जाके तुम्हारा बिल पूरा होगा। विकास गरीब क्यों ना हो पर एक खुददार आदमी था। वो जानता था कि अगर उसने खाना खाया है और अभी उसके पास पैसे नहीं है बिल चुकाने के लिए तो वो ये काम जरूर करेगा। तो विकास अपना शर्ट उतारता, अपनी पैंट उतारता और एक लंबा सा रखा हुआ कपड़ा पहनता है ताकि उसके जो शादी के कपड़े सफारी वो गंदा ना हो। और वो कपड़ा लपेट कर एक लुंगी जो रखी हुई होती है वहां पर वो लपेट लेता है और सोचता है वही लपेट कर वो काम करेगा। अब वो लुंगी लपेट लेता है और बड़ा सा पतीला को खींचते हुए अपने पास लेके आता है, ब्रश उठाता है, उस पर थोड़ी सी टिकिया लगाता है और पतीले में जैसे हाथ मांझने जाता है, वो पतीले को मांझने जाता है, उसकी नजर उठती है, जाती है अपने पैंट पर और पैंट की जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहां पे तुरपाई की होती है पैंट को, वो हिस्सा फटा हुआ होता है, लगभग 2 से 3 इंच, और उस फटे हुए हिस्से में वो पैसे जाकर अटक जाता है जो विकास ने अपने सीधे साइड के पतलून में जो फटी हुई जेब है वहां पे जब वो डालते हैं तो वो पैसे कहीं गिरते नहीं है, उसी की ही पतलून के जो नीचे वाले हिस्से में जाके अटक जाता है। और तब विकास को याद आता है कि ये जो शरारत है ये और किसी की नहीं, उस अलमारी में घूमते फिरते हुए उसके घर में टहलते हुए चूहों की है। ये चूहे ही थे जिन्होंने उसका जेब कतर दिया और ये चूहे ही थे जिन्होंने वो तुरपाई को काट दिया था और उस तुरपाई में वो पैसे जा अटके थे। तो विकास जब वो पैसे देखता है तो इतना ज्यादा खुश होता है और बहुत जोर से चिल्लाता है जैसे मानो उसने आसमान पा लिया हो, जैसे मानो उसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, जैसे मानो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। इतना जोर से चीखता है और जाकर सीधे वो पैसे लेता है। वो पैसे अब वो पैंट में नहीं डालकर अपनी शेरवानी के ऊपर वाले हिस्से में रखता है, शेरवानी पहनता है और आता है वेटर के पास और उससे कहता है, भैया जी हम आपसे कह रहे थे ना कि पैसे थे हमारे पास और पैसे है हमारे पास, ये देखिए ये पैसे जो है हमारे तुरपाई में अटके हुए थे पैंट के नीचे वाले हिस्से में, शायद वो चूहों ने कतर दिया था और हमारी जेब भी, हम झूठ नहीं कह रहे थे आपसे, अभी ये आपका पैसा लीजिए खाने का और हमें जाने दीजिए, हमारी सुमन हमारा बाहर इंतजार कर रही है, न जाने कितनी रो रही होगी वो। और ठीक इसी तरह विकास वो बिल पे करके जब बाहर आता है तो सुमन जोती हुई उस होटल के बाहर जो एक छोटा सा मंदिर है वहां पे रोती हुई ये प्रार्थना में लगी हुई है कि बस जल्द से जल्द उसका पति विकास बाहर आ जाए। और विकास जब बाहर आता है तो विकास उससे वो पूरा वाकया बयान करता है कि कैसे कैसे उससे वो पैसे फिर मिले और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बचे हुए 450 रुपए जो होते हैं उसके पास वो पैसे विकास सुमन के हाथों में देता और कहता है कि लक्ष्मी को लक्ष्मी के पास ही होना चाहिए, मेरे पास आप वही काफी है, आप ये लक्ष्मी को अपने पास ही रखें। और दोनों खुश होकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों कहानियां हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी सीख देती है कि जो शायद हमने कभी सोची भी ना हो, जैसे कि हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं और हम बस यही कोशिश में रहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमारी तकलीफ हमारी परेशानी खत्म हो जाए, और अचानक से एक ऐसा रास्ता खुलता है
1: कि शायद हमने जिसकी कभी उम्मीद नहीं की होती और वहां से हमारी उस परेशानी का हल आता है। वो कहते हैं ना, जब भगवान एक दरवाजे बंद करता है तो 10 दरवाजे खोलता है। ठीक उसी तरीके से हुआ विकास और सुमन की कहानी में, जहां उन्हें लगा कि सारे दरवाजे बंद है, अब कोई ये परेशानी खत्म ही नहीं होगी, ये परेशानी टल ही नहीं सकती, ये परेशानी का कोई हल ही नहीं है। और अचानक से एक ऐसा हल आया इस कहानी में कि जिसकी किसी ने कभी कल्पना ही नहीं की होगी, जिसकी कल्पना ना शायद सुमन ने की, ना विकास ने की, ना वेटर ने की, ना किसी ने की, पर भगवान जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपकी नियति, आपके अच्छे काम, आपकी मेहनत आपको उस मुकाम पर ला खड़ा करती है कि आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो वो एक पल में हल हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये कहानी को सुनने के लिए। मैं फिर से लौटूंगा दोबारा एक नई कहानी लेकर। तब तक आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल में घर कर जाए।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर शेख लेके आया हूँ कहानियों के गुल्लक में एक और कहानी। कहानी का नाम है एक हफ्ते की जिंदगी। कुछ कहानियां हमें जिंदगी का ऐसा सबक दे देती है जो शायद हमने कभी सोचा ही ना हो। हम जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानियों में होते हैं कि हम कभी सोच भी नहीं पाते कि उन परेशानियों का हल एक छोटी सी चीज में छुपा हो। तो ये कहानी भी एक ऐसी है कि इतनी बड़ी परेशानियां कैसे हल हो जाती है। तो चलो देखते हैं। सुबह का वक्त था, पहाड़ों के बीच एक पुराना सा आश्रम था। ना कोई शोर, ना शहर की भागदौड़, बस हवा की हल्की सी सरसराहट और पेड़ों पर बैठे पंछियों की आवाज। आश्रम के बाहर एक छोटा सा पत्थर का बोर्ड लगा था जिसमें बस दो शब्द लिखे थे, शांति धाम। यहां रोज लोग आते थे, कोई दुख लेकर, कोई सवाल लेकर, कोई बस सुकून की तलाश में। और आश्रम के बीच एक छोटे से चबूतरे पर बैठे थे संत आनंदगिरी महाराज। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। बाल सफेद थे लेकिन चेहरे पर एक अजब सा तेज था, एक अजीब सी रोशनी जिसे सिर्फ कोई महापुरुष या कोई ऐसे संत महात्मा में देखा जाता है जो सिद्धि प्राप्ति कर चुका हो। आंखों में इतनी शांति थी कि जो भी उन्हें देखता उसका मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता। लोग कहते थे ये संत सिर्फ बात नहीं करते, दिल पढ़ लेते। उस दिन भी सुबह का वक्त था, संत आनंदगिरी महाराज चबूतरे पर आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। तभी आश्रम के गेट पर एक काली लग्जरी कार रुकी। ड्राइवर जल्दी से उतरा, दरवाजा खोला। कार से एक आदमी बाहर आता, महंगे कपड़े, ब्रांडेड वॉच, पॉलिश शूज, लेकिन चेहरे पर सुकून नहीं। उसका नाम था राघव मेहता, शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, होटल्स, मॉल्स। उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि लोग उसका नाम इज्जत से लेते थे, लेकिन अगर कोई उसके करीब जाता तो उसे समझ जाता कि वो अंदर से कितना टूट चुका है। राघव धीरे धीरे चलते हुए आश्रम के अंदर आया। उसने आसपास देखा, कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग शांत से दर्शन ले रहे थे और कुछ दर्शन लेने के लिए लाइन में खड़े थे, लेकिन राघव को किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। वो सीधा चबूतरे की तरफ बढ़ गया। संत आनंदगिरी महाराज ने आंखें खोली, उन्होंने राघव को देखा और बस एक पल में ऐसा कुछ हो गया कि राघव आनंदगिरी महाराज के इशारों पर नाचने लगा। जो अपने पैसों के घमंड से, अपने ईगो से भरा पड़ा आदमी, उसे आनंदगिरी महाराज ने कहा इधर आओ बेटा। राघव बिना कुछ बोले चुपचाप चबूतरे के पास बैठ गया। कुछ पल तक दोनों चुप रहे, फिर आनंदगिरी महाराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं, पूछो। राघव ने हल्की सी और थकी हुई स्माइल देकर कहा, बाबा सवाल नहीं, बोझ। महाराज ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और कहा, बताओ क्या बोझ है। राघव ने गहरी सांस ली, बाबा मेरे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, इज्जत, पावर, लोग मुझे सक्सेसफुल कहते हैं। वो रुक गए, फिर धीरे से बोला, लेकिन मुझे लगता है मैं अंदर से खाली हूं। आनंदगिरी महाराज चुप रहे। राघव बोलता गया, रात को नींद नहीं आती, हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं कोई मुझे धोखा ना दे दे, कहीं कोई मेरी प्रॉपर्टी ना छीन ले। भाइयों से कोर्ट केस चल रहा है, बहन से बात बंद है, दोस्तों से झगड़ा हो चुका है। उसकी आवाज थोड़ी भर गई, बाबा मेरे पास इतना पैसा है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं। महाराज ने कुछ पल तक उसको देखा, फिर पूछा, सच सुनना चाहते हो बेटा।
राघव ने तुरंत सर हिलाया, हाँ हाँ बाबा मैं सच सुनना चाहता हूं। आनंद गिरी महाराज ने कहा, बेटा सच बहुत कड़वा होता है, शायद इस सच को तुम पचा भी ना पाओ और शायद ये सच सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक ना जाए। पर राघव परेशान था, उसके पास कोई और उपाय नहीं था, उसके पास कोई दूसरा सलूशन नहीं था। वो बस इतना चाहता था कि जैसे तैसे उसके बस सवालों का उसे जवाब मिल जाए, उसके प्रॉब्लम्स का उसे सलूशन मिल जाए। राघव ने जब उनसे कहा कि तुरंत जी बाबा मुझे जवाब बता दीजिए, मैं क्यों परेशान हूं, मुझे सच बता दीजिए, तो महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। राघव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया, मतलब महाराज ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है। राघव के पैर के नीचे की जमीन की सकती एक पल में उसे उसके वो बचपन से लेके अब तक के वो सारे दिन एक पल में उसे नजर आ गए। एक हफ्ता, राघव ने कहा, बाबा क्या मैं मरने वाला हूं? बाबा ने कहा, हाँ बेटा, इस एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे जितने बचे हुए काम हैं उन कामों को पूरा कर लो और ये एक हफ्ता तुम ऐसे जियो जैसे कोई नया बालक जब जन्म लेता है तब उसे ना दुनिया ना किसी चीज की पड़ी होती है, वो बस पवित्र होता है, वो बस देना जानता है, वो बस शांत रहना जानता है, वो बस खेलना जानता है, वो बस बस कोमल होता है, बस सच्चा होता है। और तुम ये अपनी जिंदगी का ये एक हफ्ता बस अपने आप से अपने प्रति सच्चे रहो।

0: वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शफीर। हम सुन रहे थे एक कहानी जिसका नाम था एक हफ्ते की जिंदगी, जिसमें आपने अभी सुना कि किस तरीके से आनंदगिरी महाराज ने राघव से कहा कि उसके पास सिर्फ एक हफ्ते की जिंदगी बची हुई है और वो एक हफ्ते अपनी जिंदगी के ऐसे जिए कि वो बहुत सच्चा हो, अपने आप से सच्चा रहे, सच बातें करे, सच चीज करे और जितना हो सके बस सच में रहे और अपनी इस बची कुची जिंदगी को बस वो सच के सहारे जिए। तो देखिए, सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। राघव का बंगलो शहर के सबसे महंगे एरिया में था। ह्यूज ग्लास वॉल्स, इटालियन मार्बल फ्लोर्स, स्विमिंग पूल, सर्वेंट, सिक्योरिटी, सब कुछ था। लेकिन उस रात उसे सब कुछ अजीब लग रहा था। वो अपने बेडरूम में अकेला बैठा था, डिम लाइट जल रही थी और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता। उसने अपने आप से पूछा, अगर सच में मेरी जिंदगी बस एक हफ्ते की है तो मैं ये एक हफ्ते में क्या करूंगा, उसने सोचा। और अचानक से उसके दिमाग में एक चेहरा आया। वो चेहरा था उसके बड़े भाई का। सालों से दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। कोर्ट में केस चल रहे थे, लॉयर्स, दलीलें, एक दूसरे पर इल्जाम, और यही प्रॉपर्टी के चक्कर में राघव की फैमिली बट चुकी थी, आधे इधर आधे उधर। यही प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ने उनकी पूरी फैमिली को तोड़ दिया था। उनके घर में ना शांति थी, हर महीने में कुछ ना कुछ लॉयर्स, कुछ ना कुछ ये वो, इन चीजों को लेकर राघव का बड़ा भाई और राघव दोनों बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे। राघव ने आंखें बंद कर ली। एक हफ्ता मैं क्या लेकर जाऊंगा अपने बड़े भैया के पास, अगले ही पल उसने फैसला कर लिया। मैं कल सुबह सब कुछ ठीक कर लूंगा। राघव ने जैसे मान्य प्रण ले लिया हो कि वो अगले दिन सुबह जाकर उसके भाई के बीच में और उसके बीच में जो इतने दिनों से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था वो उसे सुलझा लूंगा। अगली सुबह राघव अपने भाई अरविंद के घर आया, दरवाजा खटखटाया। अरविंद ने दरवाजा खोला, दोनों भाई एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे को देखते रहे। सालों की दूरी उनकी आंखों में नजर आ रही थी। अरविंद ने थोड़े ठंडी आवाज में उनसे बोला, क्या काम है? राघव की आंखों में आंसू आ गए। भाई मुझे माफ कर, राघव ने कहा। अरविंद हैरान रह गया, तुम ठीक हो राघव? राघव ने कहा, भाई मुझे घर में नहीं बुलाओगे? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। राघव और अरविंद दोनों चेयर पर बैठ गए। राघव की आंखें पश्चाताप से भरी हुई थी। उसके दिल पर मानो एक अजब सा बोझ था। वो बोझ के सहारे जैसे वो जी रहा। अरविंद ने कहा, राघव पानी पी लो। राघव ने पानी पिया। भैया ये फाइल प्रॉपर्टी केस की है, भैया मैं ये केस वापस ले रहा हूं। अरविंद शॉक में था। राघव तुम ठीक हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? कुछ मतलब कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नहीं भैया, बस मैं ये केस वापस ले रहा हूँ, मुझे अब आपसे नहीं लड़ना है। ये प्रॉपर्टी, ये बंगला, ये सब आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस ये आप रख लो, मैं केस वापस ले लेता हूँ, मैं कोर्ट में अपने वकील से कह दूंगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, मैं जो पेपर पे आप बोलोगे उस पेपर पे साइन कर दूंगा, बस मुझे माफ कर दो, बस मुझे माफ कर दो। राघव ये कहते कहते रो पड़ा और रोते रोते वो अपने भाई के पैरों में गिर गया। अरविंद को ये देखा नहीं गया, उसने राघव को उठाया, अपने गले से लगाया और कहा कि नहीं मेरे भाई रोते नहीं हैं, शांत हो जा, मैंने तुझे माफ किया, शांत हो जा मेरे भाई, मैंने तुझे माफ किया। और ये कहते हुए दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। उस दिन राघव का मन हल्का हुआ, उसके दिल पर जो बोझ था वो भी हल्का हुआ। अब राघव ने डिसाइड कर लिया था कि उसके जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो इस एक हफ्ते में उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। जितने लोगों से उसके डिस्प्यूट चल रहे हैं, जितने लोग उससे नाराज चल रहे हैं, जितने लोग उससे परेशान हैं, उन सारे लोगों को वो जाकर मनाएगा, उनसे माफ़ी मांगेगा, उनकी जो परेशानियां हैं या जितनी भी तकलीफें उन्हें हुई है उन सारी चीज़ों के लिए वो जाकर उनसे माफ़ी मांगेगा। और इसी माफ़ी मांगने के अगले सिलसिले में अगला नंबर था उसकी बहन का।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

वेलकम दोस्तों, हम सुन रहे थे राघव की कहानी। जैसे कि उसने जाकर अपने भाई से माफी मांग ली और अगला नंबर था वो जाने वाला था अपनी बहन के घर अपनी बहन से माफी मांगने। तो राघव अपनी बहन के घर पहुंचता है और डोर बेल रिंग करता है और जैसे डोर खुलता है राघव अपनी बहन नेहा के चरणों में गिर जाता है और उसे कहता है, बहन मुझे माफ करो, मैंने बड़ी बदतमीजी से तुम्हारे साथ बिहेव किया था। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, मैंने तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ली, तुम्हें कुछ दिया नहीं और बस हर वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। बहुत सेल्फिश था मैं, पर मैं अब सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं नहीं रखना चाहता तुम्हारा कुछ, ये फाइल जो है मेरे पास ये तुम रख लो, इसमें तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, ये जो तुम्हारा हिस्सा है ये मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, बस बहन अब ये रख लो और मुझे माफ कर दो मेरी गलती के लिए। राघव को रोता हुआ देखकर उसकी बहन नेहा भी रोने लगी और उसने जैसे तैसे अपने भाई को शांत कराया। नेहा ने अपने भाई को माफ किया और दोनों चाय पीने लगे। चाय पीते पीते राघव ने सोचा कि अगले दिन वो अपने दोस्त कबीर और समीर इन दोनों से सॉरी कहेगा जो उसके बिजनेस पार्टनर्स थे और उसके बचपन के दोस्त भी थे। तो अगली सुबह राघव अपने घर से निकलता है, कबीर और समीर के ऑफिस में जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दोनों उससे मिलने के लिए आते हैं बाहर, तीनों जाते हैं कैफेटेरिया में कॉफी पीने, जहां समीर और कबीर दोनों बैठे और दोनों को देखते हुए राघव बड़े भारी आवाज में और बड़ी पश्चाताप के साथ, उसकी आंखों में वो पश्चाताप नजर आ रहा था और उस पश्चाताप के साथ वो कबीर और समीर से सॉरी कहता है। जब राघव सॉरी कहता है तो कबीर और समीर देखकर शॉक हो जाते हैं और हंस पड़ते हैं, पागल है क्या यार, तू इतने साल के बाद मिलने आ रहा है और सॉरी बोल रहा है, हमने तो कभी इन चीजों को अपने दिल में रखा ही नहीं था, तू हमारा पहले भी दोस्त था, तू हमारा आज भी दोस्त है और तू हमारा हमेशा दोस्त रहेगा, इन चीजों से हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। हाँ कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे बिजनेस को लेकर हमारे बीच में, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये धीरे धीरे सारी चीजें होते गई, राघव के दिल पर जो बोझ था वो धीरे धीरे उतरने लगा था। दिन गुजरते गए, राघव हर दिन किसी ना किसी से मिलता, किसी ना किसी से माफी मांगता, किसी ना किसी को गले लगाता, किसी को शुक्रिया बोलता। अब वो हर रात अच्छा महसूस करने लगा था, उसके अंदर की बेचैनी कम हो रही थी, उसे नींद आने लगी थी, दिल में एक अजीब सी शांति आने लगी थी। फिर आया सातवां दिन, सुबह राघव की आंख खुली, उसने घड़ी देखी, फिर अपने हाथ देखे, फिर आसमान की तरफ देखा, मैं जिंदा हूं। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, वो तुरंत कार में बैठा और सीधे आश्रम की तरफ चला गया। संत अनंतगिरि महाराज चबूतरे पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, राघव भागते हुए उनके पास आया, बाबा बाबा मैं जिंदा हूँ। संत महाराज ने आंखें खोली, राघव खुशी से बोल पड़ा, मैं जिंदा हूँ, आपकी दुआ ने मुझे बचा लिया, अगर आप नहीं होते तो मैं मर जाता। संत महाराज हल्के से मुस्कुराए, फिर शांत आवाज में बोला, बेटा तुम मरने वाले तो थे ही नहीं। राघव हैरान रह गया, मतलब? संत बोले, मैंने तुमसे झूठ बोला। राघव बिल्कुल चुप हो गया। महाराज ने आगे कहा, तुम्हारी परेशानी मौत नहीं थी, तुम्हारी परेशानी तुम्हारा अहंकार था, तुम्हारे ग्रजिस थे, तुम सबसे लड़कर जी रहे थे,
इसीलिए तुम्हारा दिल भारी था और वो सब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था। जब तुम्हें लगा कि जिंदगी सिर्फ एक हफ्ते की बची है तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया, ईगो छोड़ दिया, लालच छोड़ दी, झगड़े छोड़ दिए, इसलिए तुम्हें सुकून मिल गया। राघव की आंखों से आंसू निकल गए। आनंदगिरी महाराज मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा अगर इंसान हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर जी ले तो जिंदगी कभी भारी नहीं लगेगी। राघव उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और वहां से जब वो निकल पड़ा तो इस बार आश्रम से निकलने के बाद वो एक बिल्कुल नया आदमी था, एक ऐसा इंसान जिसके दिल में ना कोई ईगो था ना कोई छल कपट। अब उसने एक ऐसे रास्ते को थामा था जो सच का था और उस रास्ते पर वो आगे बढ़ना चाहता था। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमारी परेशानियां बहुत बड़ी होती है लेकिन उन परेशानियों का हल काफी छोटा होता है। ठीक उसी तरह जैसे ताला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो खुल जाता है महज एक छोटी चाबी से। तो हम अक्सर हमारी जिंदगी को ऐसे जीते हैं कि हमारा आखिरी दिन कभी आएगा ही नहीं, पर हम ये नहीं जानते कि मृत्यु ही आखिरी सत्य है और इस सत्य से भागा नहीं जा सकता, इसे हम टाल भी नहीं सकते। बस इस सत्य से हम थोड़े दूर हैं। ये सत्य को हमें कभी ना कभी महसूस करना है, इस सत्य की ओर हमें कभी ना कभी जाना है। तो बस इस कहानी का अंत करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि हमेशा सच के साथ रहे, सत्य के मार्ग पर चले, क्योंकि सत्य ही हमें परमेश्वर की ओर लेके जाएगा, सत्य ही हमें परमेश्वर का दर्शन कराएगा, सत्य से ही परमेश्वर की प्राप्ति होगी और सत्य से ही हमें सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, हमने सुनी एक हफ्ते की जिंदगी की कहानी और इस कहानी का हो गया है अंत। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, लेके आएंगे एक नई कहानी जिसमें होंगी कुछ मजेदार किस्से, कुछ कहानियां, कुछ शब्द, कुछ कहानियां, कुछ कविताएं और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शब्बीर शेख लेता हूं आपसे अभी विदा। अलविदा।

0: friends, welcome to Acharya 90 FM, your own radio. In celebrity show, myself, Ajay Tejaswini, would like to introduce a great singer. He's presently in the US and working in various aspects of music. So we have with us Dr. Rish. Hi, Rish.
1: Hello, how are you?
0: welcome to Bombay, welcome to India, first of all, welcome to Bombay, and then welcome to Acharya 90 FM. And would like to thank Mangesh also. Mangesh's friend is Dr. Rish, and they are both connected, musically connected, and he introduced Dr. Rish to us. And so I'll be taking a short 30 minutes interview with him. So we'll know about his journey, his musical journey, of course. So shall we start, Rish?
1: Yes.
0: Yeah. So how are you feeling coming to Bombay, and how is the vibes?
1: Oh,
0: Bombay vibes. In hot summer you have come.
1: Yeah, exactly. So सबसे पहले तो इधर या कंपैरेटिवली थोड़ी गर्मी तो है. आई थिंक इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 40s दो दिन पहले, बट इट्स लाइक इट्स टोटली पंजाब जैसा तो नहीं है.
0: हाँ.
1: तो बहुत फास्ट पेस्ड है. हुँ. और यू नो इट्स लाइक अ मेल्टिंग पॉट. यहाँ पे इतना कल्चरल ब्लेंडिंग है.
0: हुँ.
1: हर तरह के लोग मिलते हैं, you know, और इट्स टू मच लाइवली. आई वुड से जैसे यूएस में सारी रात हम बड़े शहरों में देखते हैं कि लोग सोते नहीं है.
0: हुँ.
1: तो मुंबई में भी you know, रात को जब मर्जी निकल जाओ.
0: या.
1: तो
0: जो मर्जी करो.
1: Right.
0: Yes, yes.
1: And obviously, yes, compared to other cities, sort of young crowd, they obviously they feel safe. That's why bahar ladke ladkiyan se aaram se ghoom le, so there is less crime rate. This is my personal
0: Suresh, would like to start from your childhood. How was your upbringing? मतलब बचपन में आप सब बच्चे तो शैतानी होते हैं, तो आप कैसे थे? एंड पंजाबी मुंडा मतलब बहुत शैतानी हम बोलते हैं वैसा तो, बट यू फॉर साउंड वेरी कूल काम, थोड़ा ऐसा लगता है. पता नहीं आप कैसे हो, लेकिन आपके बारे में बताओ थोड़ा.
1: या श्योर. सो आई थिंक इसमें तो मैं बोलता ही जाऊंगा. फील फ्री टू स्टॉप मी फॉर एनी क्वेश्चंस. बट या आई विल स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन. So I am based out of Dallas and Miami in US. But मैं चंडीगढ़ में बॉर्न हुआ हूँ और US में मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं. एंड मैंने म्यूजिक सीखा है बचपन से ही. एंड देन आई वेंट टू US और उधर मैं विद माई ऐसे कॉन्टेक्ट्स, अच्छे कॉन्टेक्ट्स बने हिप हॉप में, दैट हमने बहुत अच्छा और यूनिक साउंड क्रिएट करने की कोशिश की है. एंड वी बीन सक्सेसफुल, बट देर आर लॉट ऑफ बिग प्रोजेक्ट्स दैट दोज आर अपकमिंग दिस ईयर, एंड देयर विल बी सम सरप्राइजेस टू फॉर द ऑडियंस. एंड our team is working really hard to make sure like we reach the right audience. Aur hamari online presence ko hum aur bhi badhana chahte hain. And yeah, going back to my childhood, so main itna kaam lag raha hu, but I have been through lot of stress and troughs apni life mein. Like main aisa nahi tha. बचपन से स्कूल में ही मैं तो सबसे शरारती

0: टाइम में ही पढ़ के तो आई यूज टू लाइक
1: एक्सेल वेल
0: या तो और टीचर्स ये भी कहते थे कि इससे बच के रहो ये खुद तो पढ़ लेते तो दैट्स हाउ आई वाज लाइक आई जस्ट लाइक थ्रिल तो मुझे ऐसे नॉर्मली बैठ के ऐसे यू नो मुझे थोड़ा बोरिंग सा फील होता था तो मैं बाहर घूमना और पढ़ना लाइक मैं सोता भी बहुत कम था और सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहना खेलते रहना और म्यूजिक भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना तो
1: सो यू कम इन दैट ब्रिलियंट कैटेगरी मतलब जो मतलब कुदरती कुछ लेके आए हैं और दिमाग है उनके पास इसलिए आप बिना पढ़े भी पास हो जाते थे एंड गुड मार्क्स भी लाते थे वी कैन से दैट
0: राइट मतलब मैं खुद तो नहीं कहूंगा बट आई वुड से यस अगर टैलेंट भी है तो लेटर ऑन लाइफ में हार्डवर्क तो
1: बनता है
0: चाहिए बट एट सम पॉइंट आपको कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करके हार्डवर्क
1: If you can't study the whole year, at least by studying 2-3 months, you can get back to your exams.
0: Right.
1: Do well in exams. Now we'll move to your musical journey. मतलब music आपके ज़िंदगी में कब आया या फिर when you got introduced to music?
0: So music starting from school life only, I used to perform solo as well and group songs maybe. But then eventually पंजाब से मैं कोटा गया पढ़ने उधर भी मैं म्यूजिक गाता था खुद से ही एंड देन मेरे MBBS में एडमिशन जब हुआ तो देन एक्चुअली आई स्टार्टेड लर्निंग बचपन से भी मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखता था बट जब मेरा पहला गोल था कि मुझे MBBS में एडमिशन लेना है तो
1: अच्छा.
0: जब फर्स्ट ईयर से आई क्रैक डेट तो मैंने कहा साथ म्यूजिक विल स्टे तो मैंने छोड़ा नहीं मतलब ऐसे परफॉर्म भी करता था बट जस्ट क्यूरियस टू लर्न मोर क्योंकि सॉन्ग राइटिंग एंड कंपोजिंग में आपको सीखना भी जरूरी है दैट्स व्हाट आई यूज टू थिंक और या सॉन्ग राइटिंग में कंपोजिशन इज प्लेज अ वेरी बिग रोल तो
1: वॉट एवर यू इमेजिन यू पुट इट ऑन पेपर्स
0: राइट और इट्स लाइक सबकॉन्शियस माइंड कंडीशनिंग भी होती है तो अपने आप संगीत बनता है ऐसा मेरा सोचना था तो इट प्लेड आउट वेल तो मैं कॉलेज में परफॉर्म भी करता था और रैप म्यूजिक प्लस सिंगिंग भी तो ये दोनों मेरी लाइफ में एक साथ ही चले हैं कुछ आपको सुनने को बहुत लोगों से मिलेगा कि यार ये तो सिर्फ रैपर है ये बहुत सिंगर्स अलग होते हैं बट हमारा अलग हमारी सोच है कि जो हमें साउंड प्रेजेंट करना है तो हमें क्लासिकल म्यूजिक भी रखना है जैसे आप कई रैप सॉन्ग्स में अब सुनोगे अपकमिंग में हमने सरगम्स डाली हुई हैं सारे ऑल
1: मेलोडीज
0: मेलोडीज एंड सरगम्स डाली हुई हैं एंड ऑल द क्लासिकल अलाप्स यूज किए हैं एंड स्टोरी राइटिंग है और रैप म्यूजिक भी है और साउंड पूरा इंटरनेशनल हमने डाला उसमें तो दैट इज वन थिंग तो यूनिक अबाउट आवर ब्रांड दैट वी ट्राइंग टू बिल्ड सो होपफुली अभी तक अच्छा चल रहा है एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग एंड ग्लोबल
1: या डेफिनेटली अभी सिंगिंग की बात हो रही है आप सोलो सिंगिंग बहुत करते थे कॉलेज टाइम्स में स्कूल टाइम्स में तो थोड़ा हमारे इधर भी थोड़ा गुनगुनाएंगे तो हमें हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा एनीथिंग एनी पार्ट ऑफ योर एल्बम्स यू कैन सिंग फॉर सम टाइम
0: या ऑफ कोर्स तो आप क्या सुनना चाहेंगे रैप या आई थिंक
1: ब्लेंडेड विद इंडियन क्लासिकल या समथिंग विद इंडियन क्लासिकल
0: ओके हमारा एक लेटेस्ट सॉन्ग जो हम कल शूट कर रहे थे तो इट्स जस्ट गिटार पे सिंपल सिंगिंग है तो इट्स वेरी प्योर एंड सोलफुल ट्रैक जो कि हम जल्दी रिलीज कर रहे हैं अप्रैल में
1: ओके
0: तो मैं उसकी दो लाइंस सुना देता हूँ

0: Welcome after the short break. You are listening to Acharya 90 FM, your own radio. Myself, Tejaswini, in Celebrity Show. We have invited Dr. Rish. He's a well-known singer, popular singer from US, and he has recently come to India for 2-3 weeks, and he's sharing his journey, musical journey, especially with Acharya 90 FM. So, Rish, I would like to know, in India, you pursued music and you started experimenting on music. So, when you thought of going abroad, specifically, as you said, you're residing in US now. So, how was that journey? What came to your mind? आपने तो यूएस का सोचा, यूएस जाने का ख्याल कैसे आया दिल में?
1: सो यस, यूएस का ख्याल तो पहले से ही था.
0: अच्छा, ओके.
1: तो जब मैंने अपना बैचलर्स एमबीबीएस स्टार्ट किया तब मैंने रैप म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया. फर्स्ट ईयर से ही मैंने वाज परफॉर्मिंग एमिनेम सॉन्ग. तब इंडिया में लिंकिन पार्क भी बहुत चलता था, तो मैं खुद के साथ साथ बड़े सिंगर्स और रैपर्स के सॉन्ग भी परफॉर्म करने लग गया. तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि मैं अपनी डिग्री खत्म करूं और कैसे यूएस में मूव हो जाऊं. तो मैंने कॉन्टैक्ट्स बनाने शुरू किए, मैंने प्लानिंग स्टार्ट की कि कैसे मैं अपना काम भी जो मैं कर रहा हूँ एज अ फिजिशियन, इसमें से मैं कैसे ट्रांजिशन करूँगा म्यूजिक में. I could do it, like सब कुछ छोड़ के भी कर सकता था मैं, but I didn't.
0: You didn't do that. Because we need bread and butter. कुछ
1: yes.
0: For survival, yeah.
1: For survival भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि you cannot do two things. Yes, you cannot. But आप ट्रांजिशन एक चीज करके दूसरी चीज में ट्रांजिशन जरूर कर सकते हैं. मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स देखते होंगे ऐसे करते हैं जो 9 to 5 से ऐसे. बट और एमबीबीएस को हर कोई नहीं, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, पहले तो एग्जाम क्रैक करना मुश्किल है, एंड देन
0: सेटअप अ क्लिनिक और व्हाटएवर योर जॉब,
1: और पढ़ाई करके पास करना भी बहुत मुश्किल
0: है.
1: तो मैं उसको ऐसे नहीं जाना देना चाहता था. आई वांटेड टू यूज इट, लेवरेज कैसे करूं उसको यूएस मूव करने के लिए. तो एंड इवेंचुअली मेक मनी फ्रॉम इट और उसको सब कुछ म्यूजिक में डालूं.
0: अच्छा.
1: तो ये था बैक ऑफ द माइंड, ये थॉट प्रोसेस था. और जब यूएस में मूव किया तो एकदम ही आई स्टार्टेड ब्लोइंग म्यूजिक एकदम आउट करना स्टार्ट कर दिया. तो इंडिपेंडेंटली ही कर रहा हूँ अभी, बट दो 2 to 3 यूएस लेवल के साथ भी ट्रैक्स आ रहे हैं इस साल, और एक दो इंडियन लेवल्स के साथ भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो इस साल के एंड तक आएंगे.
0: Till now, I've come to know that your music is your passion. But how you converted into your business, that you would like to know.
1: So, it's like...
0: मतलब it's quite tough. मतलब
1: यहाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें
0: मतलब भारत के कोने-कोने में, मतलब कहीं भी दिल्ली जाओ, दिल्ली से लेके गली तक म्यूजिक से भरा पड़ा है. तो आपने मतलब कोने-कोने में म्यूजिक है, तो उसमें आपका म्यूजिक कैसा डिफरेंट होना चाहिए, हाउ इट शुड बी वर्सेटाइल, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए.
1: राइट. सो यहाँ पे मेरा पार्ट आता है, बिकॉज इसमें जो क्रिएटिविटी का रोल है उसमें ऑब्वियसली हमारी टीम भी है. तो एवरीवन गिव्स देयर इनपुट, और बट मेकिंग सॉन्ग स्टार्टिंग से कैसे बनाना है, बीट्स कैसे आ रही हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जा रहे हैं बीच में, गाने को कैसे कैचीनेस भी रखनी है बट मीनिंगफुल भी बनाना है, एंड स्टोरी टेलिंग भी करनी है, एंड यू नो इफ देयर इज अ मेलोडी एज वेल, और इफ लोगों के कुछ इमोशंस जाग रहे हैं उससे, सो दैट ओनली देन गोना कम बैक एंड लिसन टू नॉट जस्ट दैट सॉन्ग बट और भी. तो क्रिएटिविटी में मेरा काफी रोल है, बट आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट वेरी गुड एट ए बिजनेस दैट पार्ट. तो उसके लिए हमारी एक इंडिया में प्रमोशन के लिए है, और यूएस में भी है, एंड वो एक तो प्री रिलीज का और पोस्ट रिलीज, एंड उसके बाद जो हम शोज कर रहे हैं उसका भी, सो दे आर बहुत अच्छे मैनेज कर रहे हैं. एंड यस, सो इट्स लाइक यूनिक साउंड बनाने के लिए ज्यादा हार्ड ट्राई भी नहीं करना, बट वी मेक श्योर दैट वी डोंट साउंड लाइक एनीवन, किसी को कॉपी भी नहीं कर रहे. तो बस वही थॉट प्रोसेस से हमारा म्यूजिक बन रहा है एंड वी हैव बीन गेटिंग गुड रिस्पॉन्स टिल नाउ. बट यू नो देयर इज इट्स बिगिनिंग, अभी तो जस्ट बिगिनिंग है.
0: ओके,
1: तो वी जस्ट वांट टू गो मोर ग्लोबल, यूके, कनाडा, इंडिया, पैन इंडिया में हर लैंग्वेज के लोग हैं. तो हम लाइक बिग आर्टिस्ट, सो और भी बड़ा बनने का हमारा प्लान है. तो एंड वी बीन इंप्लीमेंटिंग इट स्टेप बाय स्टेप. सो
0: Let's hope for the best.
1: Yes.
0: Acha, so I would like to like how you look towards music. Like aap abhi bol rahe ho ki global music and all. So like you have your own band or how is it like? Like you perform in a band or you only do for your YouTube channel, you do only albums, shooting of albums. How is it like?
1: So it's a tino different
0: aspects.
1: Parts.
0: Okay.
1: Yeah. So we are working with different producers, US based producer hain, Canada mein hain, kafi acche Punjabi producers hain, aapne suna hoga, aur Punjab based hain, Delhi based hain, aur Mumbai based hain, jahan pe hum we are also pressure testing Kram's music, maybe kuch acha bana rahe hain. To डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ काम चलता है. तो देन इवेंचुअली सारी प्रमोशन टीम के साथ रिलीजेस प्लान होती हैं एंड देन उसके बाद जो प्रमोशन टीम है जो रिलीज पे काम करती है दे इवेंचुअली यूएस में जो हमारे जैसे अभी मायामी में शो हुआ था तो डिफरेंट सिटीज में बिग सिटीज में परफॉर्मेंस शो होते हैं लाइव. तो वो सेपरेट टीम तो जो वो देखते हैं. तो प्री प्रोडक्शन और रिलीज वाली जो प्रमोशन टीम है वही बाद में शोज का भी देखती है लाइव जो
0: Lastly, moving towards the end of this podcast, would any future projects you're planning or how is it like?
1: So, we are अभी तक हमारा अच्छा चल रहा है, but हम नई चीजें experiment भी कर रहे हैं. तो that is a separate part, but we are making sure that हमारे releases consistently आए. एक मंथ में एटलीस्ट टू सॉन्ग्स का हमारा गोल है. तो एंड जैसे अभी अपने मैंने सुना है लाइक वेरी लाइट रोमांटिक
0: ज्यादा वो यंगस्टर्स में वो ज्यादा पॉपुलर है.
1: राइट. तो वैसे बैक टू बैक रिलीजेस आएंगे नेक्स्ट सिक्स मंथ्स.
0: वाओ.
1: और फिर ईयर एंड में एक दो पार्टी सॉन्ग हैं जो हमने प्लान किए हैं.
0: How is your feedback on YouTube channel? How is up till now? How is the response for your albums?
1: It's been 1.5 years. तो जब हमने पहला song release किया था हंस के दिखा पंजाबी rap song उसमें singing किया तो दिखा था मैंने अपने producer के साथ like we did it in 15 minutes but उसका पूरा overwhelming बहुत अच्छा response आया हमें.
0: Okay.
1: तो तब से लाइक हमारे फॉलोअर्स एंड यूट्यूब व्यूज स्टार्ट हुए तब से देयर नॉट बीन स्टॉपिंग और
0: द ग्राफ इज ग्रोइंग
1: एंड अ कपल ऑफ मंथ्स में आई थिंक वी विल रीच 100K फॉलोअर्स. तो इट्स गुड. इंस्टाग्राम पे भी वी क्लोज टू आई थिंक 70-80K एंड with today's social media stuff, एक और स्ट्रेटेजी जो हम फॉलो कर रहे हैं इज लाइक आवर मेन फोकस यूट्यूब पे. यूट्यूब शॉर्ट्स का तो है ही एंड वीडियोस टू इंस्टाग्राम शॉर्टकट कंटेंट पे भी
0: ट्रेंडिंग के ट्रेंडिंग के हिसाब से बनाते
1: हो 30 सेकंड्स में करना है एंड बेस्ट कंटेंट 30 सेकंड में कैसे दे सकते हैं तो उस पे बैठते हैं फिर सॉन्ग के बेस्ट पार्ट्स बेस्ट कैची बेस्ट लिरिक्स उठाना उस पे परफॉर्म करना और यू नो हाउ टू हुक अप द ऑडियंस इन फर्स्ट 5 सेकंड्स जो कि काफी क्रिएटर्स या सिर्फ म्यूजिक आर्टिस्ट नहीं बाकी भी सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल सो देयर इज अ स्ट्रेटजी लॉन्ग बहुत प्लानिंग चल जाती है
0: Yeah, till today I have been to two great festivals like Sunburn Festival, you must have heard of that.
1: Yeah.
0: Sunburn, I've been there and next is Shakti Band, which was very famous of Zakir Bhai, Zakir Hussain. Yeah. So I hope your brand also grows like that and you get millions and thousands, millions all viewership and your channel also grow and you yourself grow and of course you have good listenership and we have all loving artists like you for our channel also. So thank you for joining us on Acharya 90FM today and looking forward with a great association. Thanks again to Mangesh and thanks to you also for coming here. Thank you.
1: Thank you. Thanks.
0: So friends, today in our celebrity show, we had Dr. Rish, the well-known singer from US and I had a short interview with him on Acharya 90FM. So do listen it on Acharya 90FM YouTube channel. So myself, Tejaswini, taking your leave for today. Thank you.

पलके बिछा के स्वागत में खड़े हैं हम। आइए, आपके आने से रोशन है हर पल। खुशियों का कारवा साथ लाई हूँ, स्वाद के जायके की बहार लाई हूँ। आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। केम छो भाई लोग, सब मजा मा? भाई सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि आप सब आचार्य 90 FM के खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना ये हमारा फर्ज है। वैसे आप सबने आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, अगर नहीं तो अभी तुरंत हमारे दोस्ती वाले आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दोस्ती को कन्फर्म कीजिए। अब चलिए, अब हम बनाने जा रहे हैं कुछ इंस्टेंट रेसिपीज जिन्हें झटपट तरीके से बनाकर फटाफट खाया जाता है। मुझ जैसे नौ सीखिए कुक के लिए ये एकदम आसान टाइप की रेसिपी है। तो तैयार हो जाइए हमारी फर्स्ट रेसिपी, जो एक फेमस इंडियन स्टार्टर है और इसका नाम है मसाला पापड़। छोटी भूख या फिर एज ए स्टार्टर आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। मसाला पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: मूंग या उड़द दाल पापड़ 2, तेल 2 चम्मच, टमाटर के टुकड़े 4 चम्मच, प्याज के टुकड़े 4 चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया मीन्स कोतमीर 2 चम्मच, नींबू 1, नमक 2 चुटकी, चाट मसाला 1 चम्मच और ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं उस खाने में उतरने वाली है। अब हम मसाला पापड़ बनाने की आसान सी रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप तवे पर थोड़ा तेल फैलाकर पापड़ को सेक लीजिए। ऐसा करने से ये पापड़ ना ही एकदम ड्राई और ना ही एकदम ऑयली होंगे। हर पापड़ को एक सेपरेट प्लेट में रखिए। फिर एक कटोरी में टमाटर और प्याज के टुकड़ों को डालिए, उसमें नमक और चाट मसाला मिक्स कीजिए। अब इस मिश्रण को भुने हुए पापड़ पर अच्छे से फैलाइए, फिर उस पर नींबू निचोड़िए, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर मींस कोतमीर से गार्निश कीजिए। इस तरह से आपका मसाला पापड़ हो गया है तैयार और बच्चा पार्टी इस मसाला पापड़ को खाने के लिए हो रही है बेकरार। तो भाई देर किस बात की, मौका भी है और दस्तूर भी है, अब तो मसाला पापड़ बनाना ही है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस मसाला पापड़ को आप दाल चावल, सब्जी रोटी या फिर एज अ इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं। पैकेट वाले चिप्स वगैरह खाने से अच्छा है कि हम होममेड मसाला पापड़ खाएं, क्योंकि होममेड खाने में टेस्ट और हेल्थ दोनों ही होता है। वैसे भी इन गर्मियों के दिनों में ज्यादा तला हुआ और मसालेदार खाना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसका इलाज है मसाला पापड़। इस पापड़ की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है प्यारे प्यारे पापड़। सबको प्यारे लगते हैं खर्रम खुर्रम पापड़, उसका एक निवाला लेने वाला दोबारा मांगेगा आकर। इसे बनाने लगते हैं चटपटे मसाले और दाल, पापड़ से ही सजता है हर हिंदुस्तानी थाल। चाहे तलो या भूनो क्रिस्पी इसकी आवाज, खाने का जायका बढ़ाता इसका अनोखा सा स्वाद। पापड़ हमारी परंपरा का है महत्वपूर्ण व्यंजन, हर रोज खाओ एक फिर भी बढ़ेगा नहीं वजन। हमारा पारंपरिक खाना नहीं है जंक फूड, स्वाद है इतना अच्छा कि सुधर देगा बिगड़ा मूड। दोबारा से अपनाएं हम हमारी भारतीय संस्कृति, देसी खाना खाकर हम पाए अच्छी प्रकृति। हमारे पारंपरिक व्यंजन नहीं किसी से कम, सारे विश्व में भारत का डंका, यही है हमारा प्रण। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा।

वैसे पापड़ की तारीफ तो हमने सुन ली, अब हम चावल की एक सिंपल सी रेसिपी सुनते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पहले भोगी का त्योहार होता है। भोगी के दिन मेरे पड़ोस की एक आंटी जो कर्नाटक के बेलगांव से हैं, वो इसे बनाती थी। आचार्य 90 FM के हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए हम इसे समर सीजन स्पेशल कूलिंग रेसिपी के तौर पर पेश कर रहे हैं। इस रेसिपी का नाम है दही कांदा चावल। इसे बनाना आसान तो है ही, लेकिन इसे एंजॉय करना एकदम इंटरेस्टिंग है। दही कांदा चावल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: जीरा डालकर पकाए हुए चावल 2 कटोरी। यहाँ पर आप कोई भी चावल ले सकते हैं, जैसे बासमती, कोलम या उकड़ा चावल। बस उन्हें अच्छे से पकाकर रूम टेम्परेचर पर लाइए। फिर हमें चाहिए ताजा दही 1 कटोरी, कोथमीर बारीक काटकर 2 चम्मच, नमक स्वादानुसार। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ। स्प्रिंग ऑनियन मीन्स हरी प्याज बारीक काटकर 1 कटोरी। दैट्स इट। अब हम इसे बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में पके हुए चावल, दही

यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ, ताजा दही को यूज करना बेटर ऑप्शन है। खट्टा दही खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह के समय दही खाना चाहिए, दोपहर के वक्त छाछ पीनी चाहिए और शाम को दूध पीना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। अब खाना बनाकर मैं तो थक गई भाई साहब, आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। वैसे मेरे पड़ोस की आंटी भोगी की थाली में दही चावल प्याज के साथ गाजर का कचुम्बर भी देती थी। गाजर के कचुम्बर का टेस्ट भी सुपर्ब है और खाने की थाली जितनी ज्यादा कलरफुल दिखती हो उतनी ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। तो पेश है हमारी अगली कलरफुल रेसिपी जिसका नाम है गाजराची कोशिंबीर मींस गाजर का कचुम्बर। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: कद्दूकस किए हुए गाजर मींस ग्रेटेड कैरेट्स 2 कटोरी, भुने हुए सिंगदाने का दरदरा पाउडर 4 चम्मच, शक्कर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 1, नींबू का रस 1 चम्मच, कोथमीर गार्निश के लिए। अब हम गाजर का कचुम्बर बनाने की रेसिपी सुनते हैं। एक बर्तन में कद्दूकस किए हुए गाजर, सिंगदाना पाउडर, नमक, शक्कर और थोड़ा नींबू का रस सब एक साथ मिलाकर अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर एक कांच की कटोरी में इस इंस्टेंट कचुम्बर को सर्व कीजिए। डेकोरेशन के लिए उस पर थोड़ी कोथमीर डालिए। दैट्स इट। गाजराची कोशिंबीर मींस गाजर का कचुम्बर तैयार है खाने के लिए। आप चाहे तो थोड़े से घी में जीरा और कड़ी पत्ता का तड़का लगाकर इस पर डाल सकते हैं। इस तरह गाजर के टेस्टी कचुम्बर को बनाइए और बेझिझक इसका लुत्फ़ उठाइए। वैसे गाजर का हलवा तो हम सब खाते ही हैं, लेकिन गाजर का कचुम्बर भी कुछ कम नहीं है। अपनी भारतीय संस्कृति में ऐसे कई सारे व्यंजन हैं जो हम भूल से गए हैं और आचार्य 90 FM के स्वाद का जायका इस शो के माध्यम से हम हमारी भारतीय संस्कृति को फिर से जानने की कोशिश जरूर करेंगे। देखा जाए तो ऐसी क्विक रेसिपीज से पेट भरता ही है, साथ ही कुकिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है। ज्यादा खाना बनाकर उसे फ्रिज में रखना, मतलब बासी बनाकर खाना, ये हमारी खाद्य संस्कृति बिल्कुल नहीं है। अगर ज्यादा खाना बने तो उसे अपनों के साथ शेयर कीजिए और मिल बांट कर खाइए। इससे आपसी दोस्ती और अपनापन बढ़ेगा। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे फेमस लेडी शेफ तरला दलाल जी की। खाना पकाने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ईयर 2007 में तरला जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेजिटेरियन रेसिपी से रिलेटेड 170 से ज्यादा कुक बुक तरला जी ने लिखी और वेजिटेरियन डेलिकेसीज को कई सारे घरों तक पहुंचाया। तरला जी ने शाकाहारी व्यंजनों को एक नया नजरिया देकर ट्रेडिशनल खान पान को मॉडर्न टच दिया है। ईयर 2023 में उन पर तरला इस नाम की एक बायोपिक फिल्म भी आई थी। हमें नाज है भारतीय शाकाहारी पाक कला की जूलिया चाइल्ड मींस शेफ तरला दलाल जी पर, जिन्होंने कुकिंग को एज अ मीडियम यूज करके सारी दुनिया में शाकाहार को फेमस किया। आज हम बात करेंगे गुजरात के एक फेमस पतले और क्रिस्पी ट्रेडिशनल नाश्ते के बारे में। ये नाश्ता मेनली गेहूं का आटा, तेल और मसालों से बनता है। ये लाइट वेट होने की वजह से एक हेल्दी स्नैक माना जाता है। इसे मेनली ट्रैवलिंग के दौरान खाना प्रेफर किया जाता है। वैसे हमारे गुजराती और राजस्थानी व्यंजनों में ये काफी फेमस है। लो कैलोरी और हाई फाइबर होने के कारण इसे वेट कंट्रोल करने वाला खाना इस रूप में पहचाना जाता। मैं बात कर रही हूँ ऑल टाइम फेवरेट खाकरा इस व्यंजन के बारे में। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा। हमारे नन्हे ऑडियंस फिलहाल समर वेकेशन मोड पर है, राइट? तो क्यों ना हम इनके लिए ही खाकरा से बनने वाली कोई चटपटी और इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाएं? इटालियन पिज्जा तो सबको मालूम ही है कि नहीं? तो आज हम खाकरा यूज करके इंडियन स्टाइल खाकरा पिज्जा बनाते हैं। खाकरा को एज अ बेस यूज करके उस पर पिज्जा सॉस, सब्जियां और चीज लगाकर हम पिज्जा को भारतीय रूप में ढालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए बच्चा पार्टी स्पेशल खाकरा पिज्जा बनाने के लिए। खाकरा पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: प्लेन या मसाला खाकरा 4, टोमेटो सॉस 4 बड़े चम्मच, ग्रेटेड चीज आइदर मोजरेला और प्रोसेस्ड, प्याज, शिमला मिर्च, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स सब मिलाकर 1 कप। यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को बारीक काटकर यूज कीजिए। फिर हमें चाहिए चाट मसाला, ओरिगानो सीड्स, चिली फ्लेक्स, सब स्वादानुसार।
यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच ओरिगानो सीड्स और एक चम्मच चिली फ्लेक्स ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए मक्खन या घी, एक चम्मच। अब हम खाकरा पिज्जा बनाने की रेसिपी सुनते हैं। सबसे पहले हमें पिज्जा बेस को तैयार करना है, इसलिए खाकरे के ऊपर टोमेटो सॉस की एक पतली लेयर लगाइए। अब स्वीट कॉर्न के दाने, कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च को उस खाकरे पर इक्वली फैलाइए। अब इस पर बहुत सारा ग्रेटेड चीज डालिए। आखिर में चाट मसाला, ओरेगानो सीड्स और चिली फ्लेक्स को इस पिज्जा पर छिड़के। फिर एक नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा सा मक्खन या घी लगाइए। अब तैयार पिज्जा को ध्यान से उठाकर एकदम आराम से उस पैन में रख दीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगाकर एकदम लो फ्लेम पे उसे पकाइए। लगभग 2-3 मिनट के बाद पिज्जा के ऊपर का चीज मेल्ट होने लगेगा। फिर उसे एक सर्विंग प्लेट में संभाल कर निकालिए। इस तरह से होममेड और इंडियन स्टाइल खाकरा पिज्जा हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने बच्चा पार्टी है एकदम बेकरार। तो भाई, शुभ काम में देरी क्यों, झटपट खाकरा पिज्जा बनाइए और फटाफट से इसका लुफ्त उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। वैसे अगर आप चाहें तो इस पिज्जा पर बारीक कटा हुआ पनीर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये और न्यूट्रिशियस बनेगा। अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कुकिंग करना हम सबको सीखना ही चाहिए। बच्चों को सॉलिड और लिक्विड पदार्थों में क्या फर्क है ये एक्सप्लेन करने के लिए किचन एक अच्छा मीडियम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, छोटे बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए चम्मच चलाना, छीलना, मिक्स करना, ऐसी एक्टिविटीज एकदम यूजफुल है। किचन से रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से छोटे बच्चे दूसरों के काम की सराहना करना सीखते हैं, क्योंकि खाना बनाने में लगने वाली मेहनत को बच्चे खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज सीखने के लिए अन्न का सम्मान करना भी सीखेंगे। भाई, लेक्चर मेथड से बेहतर तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही होता है कि नहीं? इनफैक्ट कुकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज से हमारे नन्हे ऑडियंस बिल्कुल बोर नहीं होंगे, बल्कि खाना बनाना और औरों के साथ उसे शेयर करना, इस काम के लिए वो एक्साइटेड ही रहेंगे। आज मैं आपको महाभारत के 5 पांडवों में से एक पांडव की कहानी सुनाती हूँ। अज्ञातवास के समय महाबली भीम वल्लभ इस नाम को धारण कर विराट नाम के एक राजा के किचन में एज अ कुक काम करने लगे। एक बार क्या हुआ कि महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ राजा विराट के महल में पधारे। तब किचन में ज्यादा कुछ सब्जियां नहीं बची थी। तब गदाधारी भीम यानी वल्लभ ने जितनी भी थोड़ी बहुत सब्जियां थी उन सब को मिलाकर एक नया व्यंजन बनाया, जिसका नाम था अवियल। और इस अवियल को खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य काफी खुश हुए। साउथ इंडिया, मेनली केरल राज्य में अवियल इस व्यंजन को इम्पोर्टेंट माना जाता है। गदाधारी भीम जिनमें हजार हाथियों की शक्ति थी, वो खुद एक कुकिंग एक्सपर्ट थे। और खास बात ये है कि खाना बनाना और खूब खाना, इन दोनों कलाओं में भीम एक्सपर्ट थे। है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी? खाने और खिलाने की इंटरेस्टिंग बातें तो चलती ही रहेंगी। अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइए। वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो

वेलकम बैक टू स्वाद का जायका। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने गदाधारी भीम की स्टोरी सुनी। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि खाना खाने वाले को खाना बनाना आए तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल डेवलप होती है। किचन में काम करना एक रूटीन वर्क होता है जो हमें डिसिप्लिन मतलब अनुशासन सिखाता है। कुकिंग करते समय मसालों और टेस्ट को बैलेंस करना पड़ता है। वैसे ही हमारी लाइफ में भी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस रखना पड़ता है। ताजी सब्जियां हमें मेहनत से मिले रिजल्ट को दिखाती है, उसे देखकर हम भी प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। जनाब इसीलिए तो किचन में एंट्री मारिए और कुकिंग की अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए। जो भी चीजें अवेलेबल है उन्हें इस्तेमाल करके जिसने खाना बनाना सीख लिया, समझो उसने जिंदगी की कठिनाइयों को फेस करके जिंदगी जीना सीख लिया है कि नहीं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई घर का किचन मींस घर का दिल होता है। यहाँ पर बर्तनों की खनक और मसालों की महक हमें प्यार और पोषण से भरती है। इस रसोई घर की खिदमत में पेश है एक कविता। कविता का नाम है मेरा रसोई घर एक जादुई कोना। घर के अंदर एक और घर, नाम है उसका रसोई घर। पूरे घर में जादुई नगरी बसती है सिर्फ यहीं पर। कढ़ाई है बीमार तो कुकर आगे आया, बजाकर सीटियां सारा टेंशन भगाया। पेट की आग बुझाता काला सा एक तवा, राई जीरे के छौंक से खुशबू बिखेरती हवा। किचन से ही पाती शक्ति, नाम है जिसका देह। घी की खुशबू से पाते हैं हम सब स्नेह। प्याज टमाटर अदरक लहसुन इन चीजों का जब लगे तड़का, तब हींग की मनमोहक खुशबू से चंचल मन मेरा बहका। घर का ये कोना जीवन की हकीकत बतलाता, मेरा रसोई घर मुझे जिंदगी जीना सिखलाता। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसे लगा ये हमें जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिए। भाई टेस्टी खाना और आचार्य 90 FM पर बजने वाला गाना ये तो सुपरहिट कॉम्बिनेशन है। आपके साथ कुछ लम्हे कई यादें बतौर इनाम मिले। स्वाद का जायका इस सफर पर हमें तजुर्बे तमाम मिले। मिलकर बिछड़ना और बिछड़कर फिर मिलना यही है जिंदगी का दस्तूर। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, इसमें मेरा क्या कसूर। आज के लिए बस इतना ही। हम वापस मिलेंगे हर सोमवार दोपहर 1 बजे और हर शुक्रवार शाम 4 बजे आरजे भारतीय सीमा की तरफ से। आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।

राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।

0: पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।
0: कैसे? एक बार फिर करना।